नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोतो, आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून 2026। हमारे स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने वाले हैं। अब कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ के प्रसारण आरंभ होते हैं। हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव पर 918 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम मोड पर 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 MHz पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप हमें ट्यून कर सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर भी।

0: 918 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव 326.7 मीटर्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे। समाचारों के पश्चात आप सुनेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए पहले समाचार बुलेटिन सुने।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ₹75 का स्मारक सिक्का और ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

0: मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. The accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. In addition, a 3-member external inquiry committee headed by the director in charge of the Bokaro steel plant of Steel Authority of India Limited has been assigned to probe the incident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Rammohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy announced a compensation of 25 lakh rupees for the kin of the deceased and 10 lakh rupees for the injured. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire incident. President Murmu extended her condolences to the families of those who lost their lives in the accident. Vice President C.P. Radhakrishnan prayed for the strength and courage to the bereaved families and wished for the speedy recovery of those injured. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each of the deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. He noted that the local authorities are providing all possible assistance to those affected. Iran and Israel have announced a halt in attacks against each other following an appeal by U.S. President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action if Israel continues its strikes against Hezbollah targets in Lebanon. On the other hand, Israeli Defense Minister Israel Katz has also warned that Israel will again target Hezbollah's stronghold in southern Beirut if attacks on northern Israel continue. The latest exchange marked the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire was reached in April. Iran launched missiles towards Israeli territory.

भक्ति संगीत की आज की सुरीली यात्रा का आरंभ करें। महावीर परम शक्तिशाली हनुमान जी के इस भजन के साथ और इन शब्दों के साथ जिनमें वर्णन किया गया है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, यानी कि प्रभु हनुमान की महिमा का वर्णन करते हुए श्लोक में कहा गया है कि जिनकी शक्ति अतुलनीय है, जिनका शरीर स्वर्ण पहाड़ों की भांति है, जिन्होंने दानवों को नष्ट किया, जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, जो समस्त गुणों के स्वामी हैं और वानरों के प्रमुख हैं, हनुमान जो प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त हैं, जिन्हें वायुपुत्र कहा जाता है, मैं उनका नमन करता हूं।

परम शक्तिशाली वीर बजरंगबली, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे पावन, ऐसे पतित, ऐसे उद्धारक प्रभु श्री राम, जिन्होंने प्रत्येक मनुष्य को आदर्श जीवन जीने के लिए नए आयाम स्थापित करते हुए अपना अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, वे राम जिन्होंने महलों के सुख वैभव त्याग कर जंगलों में जाकर अकिंचन वर्ग के साथ मैत्री स्थापित की, वे परम शक्तिशाली राम जो सर्वसमर्थ होते हुए भी रावण को बारंबार प्रार्थना करते रहे, समुद्र को सुखा सकने की शक्ति रखने वाले राम जिन्होंने सागर से विनयपूर्वक निवेदन किया कि वे मार्ग दे दें, वे राम जिन्होंने सरयू नदी पार करने के बदले अपने मित्र केवट को वचन दिया कि वे उसे भवसागर से पार लगाएंगे, ऐसे राम को भजने में ही भलाई है।

भक्ति रचनाओं का दैनिक कार्यक्रम वंदना, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से 918 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं कमल पारीक आज आपके साथ आपके सेवा में हाजिर हूँ। हमारा मन जब व्याकुल होकर के उस परमात्मा को पुकारता है तो वो पुकार इस अनंत ब्रह्मांड से होती हुई जगत नियंता तक अवश्य पहुंचती है, लेकिन यह तभी होता है जब व्यक्ति किसी ऐसे संकट में हो जिससे निजात पाना उसके वश में न हो, या फिर उसके मन में परमपिता परमात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव पैदा हो जाए कि उसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी अन्य अच्छा न लगे। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति एकाकार हो जाता है, तब दो का भाव नहीं रहता, वह खुद परमात्मा में इतना डूब जाता है, यकीन जाने वह खुद परमात्मा हो जाता है। बस उस क्षण, उस पल एक छोटा सा एहसास, एक झीना सा जो आवरण है बीच में वो हट जाता है और महसूस होता है कि उसी परमात्मा का अंश हम खुद हैं, हमारे अंदर मौजूद है। बस पुकार करुण होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा हृदय एकदम पवित्र होता है और पवित्र हृदय की प्रार्थनाएं शीघ्र सुनी जाती हैं। वैसे भी हम चाहे कितनी भी चतुराई कर लें, कितनी भी चालाकी कर लें, कितनी भी होशियारी दिखा दें, परमेश्वर के आगे इन सब की आवश्यकता नहीं है। वहां आवश्यकता है

करुणा की, प्रेम की, सरलता की, क्योंकि आखिर जब कुछ नहीं सूझता तो सिर्फ उसी मालिक का दर सूझता है और उसके दर से कभी कोई खाली नहीं लौटता। यकीन जाने सच्चे मन से प्रार्थना करके देखें, क्योंकि उसके सिवाय हमारी सुध-बुध लेने वाला, हमारी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है।

जो देवताओं के भी देवता हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, इस चराचर जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने गले में धारण किया, मृगछाला लपेटे, अपनी आंखों को मूंदे, कैलाश पर्वत पर अपनी मौज में रमते हैं, बिना किसी आडंबर के अवघड़दानी आशुतोष भगवान शिव भोलेनाथ। आइए उनके चरणों में अपना शीश झुकाएं।

0: वंदना के पश्चात ये समय है आध्यात्मिक दर्शन के दैनिक कार्यक्रम चिंतन का।
1: गीता में कर्म योग पर इतना विशद विवेचन है कि मद भगवत गीता स्वयं कर्म का पर्याय बन गई। एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। इसमें एक बात ये स्पष्ट होती है, हमारे हाथों में केवल कर्म ही है, फल पर नियंत्रण हमारा नहीं होता है। पुरुष व महिलाएं जब भी आराधना स्थल पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह भी तो ईश्वर का ही दिया होता है। हमारा तो वहां भी कर्म ही होता है। जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष

भी तो कर्म पर ही आधारित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोक्ष का मूल आधार भी कर्म है। यह भी सत्य है कि कर्म रहित जीवन का कोई औचित्य नहीं होता। कहा भी जाता है, अकर्मण्य व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई वजूद नहीं होता है। परिवार, समाज, देश के लिए वो भार स्वरूप होता है। येषां विद्यान तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आप जानते हैं, किसान वर्षा होने के बावजूद यदि खेत में बिजाई और निराई नहीं करता है, खेत की समय पर उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह अच्छी फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है। अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं भी अपना अध्ययन कड़ी मेहनत से नहीं करते हैं, यानी एकलव्य जैसी एकाग्रता, कलाकार जैसी सतत साधना और रियाज नहीं करते हैं, तो सफलता की उम्मीद करना बेमानी होता है। किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्यरत है तो उसे कर्म की प्रधानता तो स्वीकार करनी ही होगी। जीवन में कर्म ही एक ऐसा योग है जिसके करने से हम अपना अभीष्ट लक्ष्य अर्जित कर पाते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात, मात्र इच्छा करने अथवा हवा में किले बनाने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, उसके लिए करना होता है उद्यम, परिश्रम। उसी प्रकार जैसे जंगल में सिंह सोया रहता है, विचरण नहीं करता है, तब ऐसे में उसके मुख में स्वतः ही कोई आहार नहीं जाता है, यानी शेर को भूखा रहना होता है। कर्मयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, व्यक्ति का कर्ता भाव। जहां भी व्यक्ति कर्ता भाव बनकर कर्म करता है, वहीं प्रकृतिजन्य परिणाम जुड़ जाते हैं। अतः उचित यह है कि कर्म भी करें और कर्ता भाव का बंधन या अहंकार व्यक्ति पर हावी न हो। व्यक्ति चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे कर्म तो करना ही होता है। कर्म ही लक्ष्य प्राप्ति अथवा सफलता का मूल स्रोत होता है। जीवन यात्रा में चरैवेति चरणवै मधुविदन्ति ही, यानी चलते रहो, निरंतर कर्म करते रहो। अनवरत चलने वाले पथिक कर्म योगी को ही जीवन के माधुर्य और सौंदर्य के दर्शन होते हैं।

कर्मयोग विषय पर आधारित आज का चिंतन आपने सुना। आलेख और वाचन स्वर थे यशपाल सिंह राठौड़ के। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले शेष और विशेष कार्यक्रमों की। प्रातः 6:55 पर संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन होंगे। 7:10 पर सुनिएगा दीमक से फसल को कैसे बचाएं विषय पर जानकारी कार्यक्रम होगा खेतियारा वास्ते। मानस गान आप सुना करते हैं 7:20 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम सुप्रभात होगा 7:30। 8 बजे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज, 8:15 और 8:30 खबरनामा दिल्ली से रिले किए जाएंगे। कुछ सुगम संगीत रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे 8:45 पर। 9:00 आप सुना करते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा मरुमंगल प्रातः 9:10 पर। 9:30 से फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे। 10 बजे फिल्म संगीत पर आधारित गा मेरे मन गा कार्यक्रम होगा। फिल्म संगीत होगा 11 बजे। दिन में 12:30 सुगम संगीत कार्यक्रम में कुछ गजलें हम आपको सुनवाएंगे। खेत खलिहान सुनिएगा 12:50 पर। जानकारी होगी कीटनाशक का निर्देशित प्रयोग करें। दिन में 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। पेट की चर्बी को कम करने के उपाय।

जौ के फायदे, गर्मी में रखें सावधानियां और कड़वी बातें भूलना जरूरी, यह सभी महत्वपूर्ण बिंदु समावेशित किए घर आंगन कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। प्रस्तुति होगी महिमा शर्मा की। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, दोपहर समाचार 2:15 बजे दिल्ली से रिले किए जाएंगे, 2:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। उर्दू सर्विस के प्रसारण आपके लिए उपलब्ध होंगे दोपहर बाद 3 बजे से। युववाणी कार्यक्रम में आज के इतिहास की जानकारी के साथ साथ कुछ अन्य समसामयिक विषय इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। युवा श्रोताओं के मनोरंजन हेतु फिल्मी गाने भी सुनवाए जाएंगे। सराय की जुबान पर आधारित झोंक माहिती हम आपको सुनवाएंगे 6:05 पर। संध्या 6:30 बजे हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। चौपाल कार्यक्रम लेकर भारत भूषण आपके लिए हाजिर होंगे 7:00 बजे। हमेशा की तरह उपलब्ध होने पर बाजार भाव मौसम की जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाती है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण तो

सराइकी जुबान पर आधारित झोंक माहिती हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर, संध्या 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे। चौपाल कार्यक्रम लेकर भारत भूषण आपके लिए हाजिर होंगे संध्या 7 बजे। हमेशा की तरह उपलब्ध होने पर बाजार भाव मौसम की जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय वायु संचार, स्वस्थ मृदा, समृद्ध फसल पर बातचीत की जाएगी। साथ ही आप सुनेंगे नीम का तेल बेहतर फसल विषय पर जानकारी और लहसुन मिर्च का अर्क कैसे तैयार करें विषय पर भी चर्चा की जाएगी। भक्ति संगीत सुनिएगा संध्या 7:45 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:30 बजे स्पोर्ट्स के, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे दिल्ली से लेके जाएंगे। गोरबंध होगा 9:15 पर। लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गंगा होगा रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के पश्चात 11:10 पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। 6:55 हुए हैं, अब समाचार सुनिए।

0: क्षगोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विकसहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषधनिर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल् क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल् ड्रग् रेगुलेटर्स् कान्क्लेव् तथा 26,000 फार्मा एण्ड् हेल्थ् केयर् इत्यस्य अन्ताराष्ट्रियप्रदर्शन्याः पूर्वालोकनसमारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीयमन्त्री जीकिशनरेड्डीवर्यः अवदत् यत् नरेन्द्रमोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अङ्गारखननक्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिलाक्रिकेट्क्रीडायां युनाइटेड् किंगडम् देशस्य कार्डिफ्नगरे 26,000 आईसीसी महिलाविंशतिप्रतिविंशति विश्वचषकक्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यासक्रीडायां भारतेन वेस्टइण्डीजदलं 26 धावनाङ्कैः पराजितम्। वार्ताः
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट तम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया

0: Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said a fire was reported at around 1:30 p.m. Mr. Sharma said, based on the preliminary information received, all Indian seafarers are presently safe. He further informed that the ship was hit by a projectile is still being verified. World Health Organization, WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus is currently in Uganda to personally assess the country's readiness to respond to the ongoing Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo and to support enhanced cross-border coordination. In women's cricket, India defeated West Indies by 26 runs in their first warm-up match ahead of the ICC Women's T20 World Cup in Cardiff, UK yesterday. After being invited to bat first, Harmanpreet Kaur led women in blue, posted 179 for 8 in the stipulated 20 overs, powered by Bharti Fulmali's unbeaten 56 runs off 40 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रगतिशील किसान भाई कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुने खेती रामवास्ती कार्यक्रम जानकारी प्रस्तुत है दीमक से फसल को कैसे बचाएं।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप खेती पाती की और खेती पाती में देखा नहीं तो आपने इस क्षेत्र का माँ कई जगह आपने इशारा कबा भी है जट है दिमक गो जो को प्रकोप है बहुत ज़्यादा है और आपने जो किसान भाई लोग है बिया तो दिमक गो कोई इलाज को नहीं लेकिन फिर भी थोड़ो बहुत आपका निशू खेचो खल्डो कर गए दिमक गो जो को प्रकोप है वो अपनी फसलों का माँ कम करने की कोशिश करे क्योंकि दिमक एक इशु कीट है जक्के की वजह से क्या पूरी पूरी फसल जकी है बा चौपट हो जाए और दिमक जकी है बा जड़ गमा लाग जाए और पूरी फसल ने शुरुआती दौर ले गए आखिरी दौर तक खत्म करना शुरू कर दिए। तो आज आप बात कर सियाँ दिमक गो जो को प्रकोप है बीच में आप अपनी जी फसल है बिन किया बचा सका और बिया देखा नहीं तो दिमक एक छोटो कीड़ो और बड़ो नुकसान करे जे वो समय पर आप रोकथाम ना करा तो की है कि बहुत बड़ो नुकसान जो है वो भी हो सके। अब बात करें जी दिमक लागण का मुख्य कारण की है तो खेत का मां जब सुकोपन ज्यादा हो जब खुश्क खेत हो और जके टेम आपने किया है पानी धानी आप खेत में ना दे तो बी टेम किया है कि इनका लागने की संभावना ज्यादा रहे और अधपकी गोबर की खाद के बार आपने जो किसान भाई लोग अब घर छू या फिर अकूल डी छू ले जाके सीधी नाक देवे तो बी छू भी खेत का माँ आपने किया है कि दिमक जकी है पैदा होनी शुरू हो जाए और खेत में पुराना फसल का अवशेष जका है भी आप यही छोड़ दे बना छितरिया छू आप जुताई ना करा फिर भी दिमक ज्यादा लागने की संभावना रहे और इनके अलावा मिट्टी में जैविक पदार्थों को असंतुलन होने के कारण भी दिमक जकी है वह आपको असर दिखाना शुरू करती है। दिमक फसलों की जड़ांग माँ तड़ांग माँ और पौधों का जो अवशेष है बंग माँ नुकसान पुगा गए और उत्पादन जो है वो कम कर दिया है। अपने टेम्परिंग को नियंत्रण करना जरूरी है और अगर टेम्पर अपना नियंत्रण कर लेवा तो इन शुक्र आप अपनी फसल जो की है वह बचा सका। अब बात करें आप इनको नियंत्रण क्या करना तो सहसु जरूरी बात तो आ है कि गर्मी का माँ खेत की गहरी जुताई अपन करनी चाहिए इशू क्या है कि दिमक का जो अंडा है बांगी जी की कलोनिया है वे नष्ट हो जाए और आपनों खेत जो है वो दिमक रहित हो जाए। इनके सागे सागे खेत का माँ उचित नमी जकी है बनाई रखनी जरूरी है खेत ने ज्यादा अपन खुश्क नहीं रखनो है सुक्को नहीं रखनो है और थोड़ो बहुत पानी जो है वो टेम टेम पर प्लेव जो है वो अपने दे के रखना चाहिए और नमी अगर माटी में रहेगी तो बठे की अगर दिमक लागने की जो संभावना है वह बहुत कम रहेगी। इनके अलावा भाई लोग अपन गोबर की जी खाद नाखा भी खाद ने नाखने से पहले अपन अच्छी तरह जांच पर कर लेना जरूरी है व अच्छी सड़ी गली होनी चाहिए और जरूरी बात तो आ है कि गोबर की खाद जी है वह कच्ची नह नाख गए आप की है कि बिंग माँ कोई दलडगा माँ या फिर टोआ का माँ बिना तैयार कर गए और बढ़िया तरीके से बिना सड़ा के बिंग कंपोस्ट खाद भी बना सका या फिर अपना केंचू वाली जी खाद है बाहर ले जाके खेत में नाखा तो बीच क्या है कि दिमक लागने की जी संभावना है वह बहुत कम हो क्योंकि थे आ बात भी जानो कि कच्चा गोबर का नहीं दिमक जकी है बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए तो बीच की है कि आपने खेत का माँ गोबर ने खांती खांती या फिर भी खाद ने खांती खांती जकी दिमक है और बाद में जे आप कोई फसल की बीजांत करांगा तो भी फसल ने खाना शुरू कर देगी और जका फसल का अवशेष है जी आप अभी थोड़े ही दिन पहला कणक की जकी कटाई करी है सरसों की जकी कटाई करी है बिंगा जका अवशेष है वे सेंदे ही पिड़े रहे तो बंगी जकी जुताई है वह बढ़िया तरीके से करनी जरूरी है तो इशू अच्छी तरह जुताई कर गए पानी लगा गए फिर एक दो बार जुताई कर देवे ताकि मिट्टी का माँ जका अवशेष है वे बिल्कुल बारीकी से मिल जाए तो भी इशू क्या है कि दिमक ने खाने पीने की मिले को नहीं और दिमक जकी है बाकी बार आप देखे करांगा डंठल जका है या फिर जका सुखा अवशेष है बंगमा हुआ है तो वो काम आपने जरूरी करना है कि अगर आपने खेत का माँ पुरानी फसलों का जका अवशेष अगर बचड़ है तो बंगा

अवशेष जक है वे हटाना जरूरी है। सागे साग अपन नीम की खड़ी को जो प्रयोग है वो अपन खेत गमा करना चाहिए, क्योंकि बुआई के टेम नीम की जी खड़ी है 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप खेत गमा इस्तेमाल करेंगे तो बी चूंकि है का अपने खेत गमा दिमक को जो प्रकोप है बहुत कम होगा और दिमक जिकी है अपनी फसल ने नुकसान कम पुगा होगी। अब बात करें जैविक नियंत्रण के बारे में तो ब्यूवेरिया बेसियाना नाम को जो को जैविक फफूंद है इनको आप अपने खेत गमा कर सका और रासायनिक नियंत्रण खातर भी अपना जो आस पास कृषि वैज्ञानिक है विशेषज्ञ है वहां जानकारी लेगे और आप अपनी खेत गमा दिमक को जो प्रकोप है वो कम करना चाहिए सा। जब भी आप नहीं लगे कि अपने खेत गमा अपनी जी फसल है वह सुकन ला रही है पीली पड़ ला रही है या फिर उखेड़ो अपन लगे कि अपनी फसल में आ गयो तो समझाना चाहिए कि कट्ठन कट्ठे दिमक को भी असर गमा हो रहा है तो अपन भी तुरता फुर्त नियंत्रण जो है वो करना जरूरी है सा। तो आम बातों को पूरा ध्यान रख के आप अपनी फसल ने दिमक से बचा सका बढ़िया उत्पादन ले सका। पर अब खेत का काम धंधा और भी करना है सा हूँ चालू राम राम सा राम राम।

ये भजन आपने सुना, आवाज थी मोइनुद्दीन की। आइए, गोस्वामी तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस पर आधारित दैनिक कार्यक्रम मानस कान सुने। इन दिनों आप सुन रहे हैं किष्किंधा कांड का सस्वर पाठ। आज प्रस्तुत है भाग 269, मुख्य स्वर श्रीकांत पारगांवकर और ए हरिहरन के।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा, ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

मानस गान का भाग 269 आपने सुना, श्रीकांत पारगांवकर और ए हरिहरन की आवाजों में। इस कार्यक्रम के संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। इस समय आपने ट्यून किया है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ 918 किलोहर्ट्ज़ पर।

सभी सुनने वालों की खिदमत में आदाब, नमस्कार। आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारिक आज आपकी सेवा में हाजिर है। श्रोतो, प्रोग्राम के आरंभ में सबसे पहले आज हम एक शख्सियत को नमन करते हैं जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। जैसी कि उस समय की स्थिति थी, सामान्य जनता गरीब होती थी, किसान परिवार में सुगना पूर्ति और माता कर्मी पूर्ति के घर में सालगा गांव में एक बालक का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में लेने के बाद वे चाईबासा स्थित गोसनर इवेंजेलिकल लुथरन चर्च में आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। ये वो काल था जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे और उन्होंने यहाँ के राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था।

उनका शिकार यहाँ की सामान्य जनता के साथ साथ आदिवासी लोग भी थे। अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और दूसरे तमाम प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने की चाल चली थी। कहीं कहीं छुटपुट आदिवासी समूह इकट्ठे होकर के विद्रोह करने की कोशिश करते थे, लेकिन न तो वो लोग पढ़े लिखे होते थे, न उनके पास कोई हथियार थे, न उनकी कहीं कोई सुनवाई थी। कुल मिलाकर के जो छोटे छोटे विद्रोह थे वो कुचल दिए जाते थे। गरीब लोग, अनपढ़ तबका मात्र उनके इस तरह से कुचले जाने के प्रयास नहीं होते थे, बल्कि गरीबी का, अशिक्षा का, जीवन में मौजूद अभावों का लाभ उठा करके मिशनरी लोग बहुत बड़ी तादाद में धर्मांतरण का काम करते थे। गरीबों को कहा जाता था कि हम तुम्हें भात देंगे, पहनने को कपड़े देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। ये जो तुम रोज बीमार रहते हो, ये ईश्वर का प्रकोप है। किसी को हैजा हो गया, चेचक हो गया, सांप काट गया, कोई जानवर उठा करके ले गया, उन सब बातों को ईश्वर की मर्जी के रूप में साबित करते हुए मिशनरी लोग दिमाग में अलग विचारधारा का पोषण करते और लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रलोभन देते। लेकिन उसी समय में आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिए एक नायक आता है जो थोड़ा शिक्षित है। उसने बताया कि यह सब कुछ विज्ञान के बारे में जानकर के आप सीख पाएंगे, बीमारियां ईश्वरीय प्रकोप नहीं है। वो उन्हें साफ सफाई रखने के लिए और मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह देते। धीरे धीरे लोग उस व्यक्ति की बातों पर कुछ भरोसा करने लगे और उन्हें एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगे। धरती आबा के रूप में उन्हें पुकारा जाने लगा। आदिवासी पुनरुत्थान के नायक अब अंग्रेजों के नहीं बल्कि मिशनरियों के आंखों में खटकने लगे।

उनके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए। किसी व्यक्ति के धन संबंधी लालच में फंसकर सूचना दिए जाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उस समय कहा जाता है कि उन्हें कोई विषैला पदार्थ दे दिया गया, क्योंकि जो धाराएं थी वो कमजोर थी, उनमें लंबे समय तक गिरफ्तार उस नायक को पकड़कर नहीं रखा जा सकता था। खैर, जहर ने अपना असर किया और आज ही के दिन, यानी कि 9 जून, साल था 1900,

उस महानायक ने इस धरती से प्रस्थान किया, वे मरे नहीं, अभी तो अमर हो गए। वो व्यक्ति थे बिरसा मुंडा। जी हां, जब भी कभी आदिवासी विद्रोह की बात हिंदुस्तान के इतिहास में की जाएगी तो बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले याद किया जाएगा। न सिर्फ बिहार बल्कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या कहें कि समूचे देश के आदिवासी लोकनायक के रूप में बिरसा मुंडा को हम सदैव याद करेंगे। आज हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उनकी शिक्षा थी कि आपस में एकता रखें, पढ़ाई करें, अपने समाज और देश की तरक्की के बारे में सोचें। आज हम आकाशवाणी के माध्यम से लोकनायक बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

साथी हाथ बैठाना, जब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे का सहयोग कर हम कोई भी काम करते हैं तो वह काम न सिर्फ शीघ्रता से संपन्न होता है बल्कि जितना हम उम्मीद करते हैं उससे भी बेहतर बन जाता है। किसी का सहयोग करके देखें, किसी सहयोग लेकर के देखें। तो यशराज फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म आई थी कभी कभी। साहिर ने इस फिल्म के लिए गाने लिखे थे, खयाम ने संगीत दिया था। इस फिल्म में एक गाना है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। लता मंगेशकर की आवाज में वो नगमा है, हम आपको सुनवाएंगे। उस गीत को जब जब कोई भी व्यक्ति सुनता है तो यकीनन उसके मनोभाव एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। आप सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा, देखा होगा, एक छोटी सी बालिका जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारे घर परिवार में हमें देखने को मिलता है कि वो नन्ही बच्ची कभी स्लेट पेंसिल लेकर के या चोक लेकर के कभी घर के गेट पर, कभी फर्श पर, कभी दीवार पर कुछ लकीरें खींचती है, अपने साथ के बच्चों को लेकर के एक ड्रामा वो करती है, खुद टीचर बनती है, उन बच्चों को बैठा करके उनको पढ़ाने का एक दृश्य उत्पन्न होता है। कितना मनोहारी, कितना सुंदर वो सीन उस समय पैदा होता है। जो लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं या जिनके घर में बच्चे आते हैं और वो

खेलते हैं, उन्होंने इस भाव को अवश्य महसूस किया होगा। छोटी सी बालिका किसी भी कपड़े को गले में डालकर के दुपट्टा बनाने का प्रयास करती है और अपने साथ के दूसरे बालकों को कहती है कि आराम से बैठो, शोर नहीं करो, ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने इसको पढ़ो, इसको रिपीट करो। आहा, कितना प्यारा वो दृश्य लगता है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है बल्कि यह वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। बालिकाओं को शिक्षित किया जाना बेहद जरूरी है, खासतौर से जिस लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार चल रही है, विकसित भारत, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए समाज में सभी का शिक्षित होना आवश्यक है, खासतौर से महिलाओं का, बालिकाओं का। न सिर्फ शिक्षित होना बल्कि स्वावलंबी होना, आत्मविश्वास से लबरेज होना बहुत जरूरी है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है कि उसके पास क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, किस तरह की सुविधाएं उसे सरकार ने मुहैया करवाई हैं। और अनपढ़ व्यक्ति हमेशा ठगा जाता है, जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ धोखा होता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, जिस तरह से एक छोटी सी रोशनी अंधेरे को दूर भगा देती है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन से अज्ञान को, भय को, भ्रष्टाचार को दूर करने में सक्षम है। पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से बहुत से कामों को कर सकता है किसी भी अनपढ़ के मुकाबले। शिक्षा से तात्पर्य सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है बल्कि दैनिक जीवन में उपयोगी हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करना भी शिक्षा का ही भाग कहा जा सकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति पाकशास्त्री नहीं बन सकता या दूसरा कोई हुनर नहीं प्राप्त कर सकता, उसे व्यावहारिक धरातल पर भी उतर करके उस ज्ञान को, उस अर्जित शिक्षा को आजमाना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा, तब वो कुछ सीख पाएगा, कुछ प्राप्त कर पाएगा। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जाहिलपन से निकालकर एक योग्य नागरिक बनाना है। समाज में जो सामान्यतः झगड़े, जो फसाद, जो बवाल, जो लड़ाइयाँ देखने में आती हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव आपको यकीनन नजर आएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति तमाम प्रपंचों से दूर रहता है, वो ज्ञान से, अंधविश्वासों से दूर रहता है, उसकी बात में लॉजिक और तर्क शामिल होते हैं। कोई काम हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सवाल करने का अधिकारी होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में तो जब तमाम साधन सुविधाएं, प्रारंभिक शिक्षा बच्चे का मूल अधिकार सरकार ने घोषित कर रखा है, उसे विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मुफ्त में पढ़ाई, साथ में भोजन मिड डे मील के रूप में अधिकांश राज्यों में उपलब्ध है, घर के नज़दीक विद्यालय है, जो लोग थोड़ा दूर से विद्यार्थी जाते हैं अपने विद्यालय में, उनको ट्रांसपोर्टेशन वाउचर के रूप में धनराशि दी जाती है ताकि वे आसानी से अपने गंतव्य तक जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिर भी यह हमारी कमजोरी है, हमारे समाज में जागृति का अभाव है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो बहुत जल्दी नशे की गिरफ्त में जाएगा, बुरी लतें, जुआ, सट्टा, शराब, धूम्रपान जैसी आदतें वो पकड़ेगा, अपने दिमाग में उसके

शरारतें भरी रहेगी और वो उपद्रव करेगा। इन सब चीजों से निजात पाना है तो हमें शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। शिक्षा भी ऐसी हो जो व्यक्ति की सोच को राष्ट्रवादी बनाए, इस धरती को, भारत भूमि को, हमारे राष्ट्र को मजबूत करने वाली हो। श्रोता, उस समय की अपनी सेवाएं हैं, आपसे बातें करने का मन हमारा बहुत है, लेकिन

श्रोता, उस समय की अपनी सेवाएं हैं, आपसे बातें करने का मन हमारा बहुत है, लेकिन अगर ज्यादा बातें की तो गीत पूरा नहीं सुन पाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का साहिर का लिखा और खय्याम का संगीतबद्ध किया ये गाना, आइए सुनें।

कुछ और मधुर फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 बजे से। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ही हैं जो देते हैं आपको आपके मनोरंजन की फुल गारंटी।

0: 918 किलो हर्ज FM के 100.1 MHz पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजते हैं, अब समाचार होंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
7: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12

0: को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेगी।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए

0: की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जाँच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. Five-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard empty Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की पांच रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरिवेक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़री वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़री इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़री तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वज़ीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ज़री इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज़ भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख

0: दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए, इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख्वातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है जो कि अब ज़्यादा काबिल रसाई किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इकतसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसी तर खिदमात फराहम कर रहे हैं जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की इज्जत में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइन

0: सुबह के 9 बजते हैं, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रादेशिक समाचार आप सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में, 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी

जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान जेडीए के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। जेडीए के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री

0: वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है 918 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव 326.7 मीटर्स पर। हमारे प्रसारण आपके लिए डीआरएम के 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध है। साथ ही आप हमें ट्यून कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से। प्रातः के 9:11 हो चुके हैं। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुने मरुमंगल। कलाकार हैं सद्दीक खां और साथी।

राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल आपने सुना। कलाकार थे सद्दीक खां और साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, आइए फिल्म संगीत सुने।

जूली फिल्म की बात सुनिए। राजा रानी फिल्म के लिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये दो गाना। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, आर डी बर्मन की धुन है।

मैं एक चोर, तू मेरी रानी। ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। फिल्म थी राजा रानी। कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा, आनंद बख्शी का लिखा नगमा सुना। किशोर का साथ दिया आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है महल।

श्रोतो, आपने ट्यून किया है कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे प्रसारण आपके लिए FM पर भी उपलब्ध हैं, 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है।

अब आप किसी अन्य काम में व्यस्त हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था प्रसार भारती ने की है। हमारे प्रोग्राम्स को मिस करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मोबाइल फ़ोन पर एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर लें, न्यूज़ ऑन AIR, और उसमें लाइव रेडियो सेक्शन में जा कर के ट्यून करें सूरतगढ़, और फिर हम हैं आपके लिए मनोरंजन की फुल गारंटी लेकर के हाजिर। प्रोग्राम की अगली प्रस्तुति आनंद बख्शी का लिखा गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है जानी दुश्मन।

विट्ठल भाई पटेल का लिखा गाना सुने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर का साथ दिया शैलेंद्र सिंह ने, फिल्म का नाम है बॉबी।

ऐसी ही चूहल ऐसी ही शरारतों के बीच आप सबके दिन सुखद समृद्ध और शांति से बीते ऐसी हम कामना करते हैं। समय मिला लें सुबह के 10:01। ये फिल्मी नगमे कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं आपका अपना रेडियो दोस्त कमल पारीक आज आपके साथ हूँ। अब कुछ गाने सुने गा मेरे मन गा प्रोग्राम में, और ये जो गीतों का संकलन है ये किया है भाई नवीन सिसोदिया ने।

मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। सुने ना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आपने सुना यशोदास की आवाज में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा नगमा आर डी बर्मन की धुन है। फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

0: प्रेम पुजारी। इस फिल्म का गीत सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गीत के बोल नीरज ने लिखे और मीठी सी धुन सचिन देव बर्मन के साजों से निकली।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

प्रेम पुजारी के बाद प्रेम पर्वत फिल्म का गीत सुने, लता मंगेशकर की आवाज़ में। जान निसार अख्तर ने इसे लिखा और जयदेव ने संगीतबद्ध किया।

ये दिल और उनके निगाहों के साए, प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण इस गीत में किया गया था। फिल्म थी प्रेम पर्वत। श्रोताओं, ये मीठे मीठे गीत कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से नशर किए जा रहे हैं। मैं कमल पारिक, आपका अपना रेडियो दोस्त, आज आपके साथ हूँ। गीतों का संकलन भाई नवीन सिसोदिया का है। प्रोग्राम का अगला नगमा हम आपको सुनवाएं, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है। उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि ये पहाड़, ये पेड़, ये नदियाँ, ये पर्वत, ये सागर, ये वनस्पति, ये हरियाली, ये सब इंसान को सुख देने के लिए है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, इस हरी भरी वसुंधरा को हरा भरा बनाए रखें, पर्यावरण का नुकसान न करें, बल्कि वृक्षारोपण करें, जो वृक्ष लगे हुए हैं उनका संरक्षण करें, जो कुदरत में, इस कायनात में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन सब के लिए भोजन की, पानी की, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार

व्यवस्था भी करें। समय मिला लें, इस समय सुबह के ठीक 10:25:30 हुए हैं। अब सुने एक नजर फिल्म का ये गाना।

मजरूह का गीत आपने सुना, लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये दो गाना था। फिल्म थी एक नज़र। इन्हीं गायकों को सुने, मजरूह का लिखा गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, नासिर हुसैन फिल्म्स के बैनर तले ये नगमा है, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये दो गाना आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन की धुन है, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर को सुने। साहिर के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने। फिल्म का नाम है शगुन।

ये मधुर फिल्मी तराने आप तक पहुंच रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और श्रोताओ, आपके मनोरंजन की गारंटी देने वाला सिर्फ एक ही केंद्र है, आकाशवाणी सूरतगढ़। इस गारंटी को बरकरार रखने के लिए कुछ ही पलों में आपसे रूबरू होंगी सुमन। फिलहाल सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गा मेरे मन गा। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

अभी आपने प्रोग्राम सुना गांव मेरे मन का। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत।

महबूब की मेहंदी। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए मोहम्मद रफ़ी को सुनिए, गीत मजरू का, संगीत आर डी बर्मन का, और फिल्म है तीसरी मंजिल।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, जिसका संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था, आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, और इस गीत को हमने फिल्म जंगली से लिया था। साथियों, फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार का गाया ये गीत। गीत के बोल नीरज के हैं, संगीत एसडी बर्मन ने तैयार किया है, और फिल्म है शर्मीली।

फिर कब मिलोगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी मुकेश और लता की, गीत के बोल मजरू के थे और धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत एक बार फिर मजरू का, संगीत सचिन देव बर्मन का, और फिल्म है तलाश।

ये आवाज़ थी आशा भोसले की और फिल्म थी मेरे सनम। श्रोताओं, इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और सुरों से सजाया था ओपी नैयर ने। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे आवाज़ दी है सुमन कल्याणपुर ने, गीत के बोल प्रेम धवन के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम है गीत।

और धुन तैयार की थी एसजी बर्मन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। गीत के बोल मजरू के हैं, संगीत एक बार फिर एसजी बर्मन का और फिल्म है ज्वेल थीफ।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। गीत नीरज का था और संगीत एसटी बर्मन ने तैयार किया था। लीजिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी धुन मदन मोहन ने तैयार की है, आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, और फिल्म है चिराग।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म संगीत सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर।

पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय होगा बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे गर्मी में रखें सावधानी, कड़वी बातें भूलना जरूरी, पेट की चर्बी को कम करने के उपाय और जौ के फायदे। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक रहेगा दूर। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा के विषय रहेंगे मेरा दोस्त रेडियो, युवाओं को दें विचार रखने की स्वतंत्रता, स्टार कार्यक्रम, बाल विवाह मुक्त भारत और साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण में 6:05 पर सिराइके प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज चर्चा के विषय रहेंगे नीम का तेल बेहतर फसल, वायु संचार स्वस्थ मृदा समृद्ध फसल, लहसुन मिर्च का अर्क कैसे तैयार करें और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। 7:45 पर भक्ति फिल्म संगीत होगा, 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर राजस्थानी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गोरबंद और रात्रि 10 बजे हिंदी फिल्मों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गंगा प्रसारित किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण।

श्रोतों, अभी आपने कार्यक्रम विवरण सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक है दूर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन का नमस्कार। साथियों, शायर फिराक गोरखपुरी ने लिखा है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। शीर्षक आप भी पहचान गए होंगे, आज का हमारा शीर्षक है दूर, यानी दूर शीर्षक से आज के प्रोग्राम में कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। साथियों, सुबह के बाद शाम आ जाती है और शाम बहुत से सवाल लेकर आती है, कुछ उदासी कुछ संजीदगी भी अपने साथ लेकर आती है, और हम घर की छत पर दूर से उसे देखते हुए यादों में कहीं खो से जाते हैं।

साथियों, मोहब्बत करने वाले दो दिल जब मिलते हैं तो उन्हें दूर रहना मंजूर नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ मजबूरियां उन्हें फिर भी दूर कर देती हैं।

0: बहुत दूर।
1: साथियों, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं एक ही शीर्षक से, और आज का शीर्षक है दूर। कहा गया है कि जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। और ये बेकरारी तब और बढ़ जाती है जब वो एक शख्स जिसे हमने दिलो जान से चाहा हो और वो हमसे और हमारे दिल से दूर हो जाए।

श्रोताओं, जहाँ प्यार हो शिकायत भी वहीं होती है, और फिर कोई एक जो अपना हो वो बेवजह हमसे दूर, बहुत दूर चला जाए तो शिकायत जायज़ भी है। नज़दीकियों में दूर का मंज़र तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर।

साथियों, कहा गया है कि बहती नदी में कच्चे घड़े हैं रिश्ते नाते हुस्न वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे इसके भरोसे मत रहना।

अभी आपने कार्यक्रम सुना एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था दूर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने निदा फाजली के लिखे ये कुछ दोहे सुने और ये है प्रोग्राम की अगली पेशकश।

श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सुगम संगीत और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। ये है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: इसी गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय।
1: किसान भाइयों राम राम। राजस्थान के अंदर या किसो भी प्रदेश है बटे बकरी पालन को एक व्यवसाय जी को है वो बड़ो सफल व्यवसाय है। बकरी हमेशा सुई गरीब की गाय कही गई है। आपने जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बिंगमा पशुपालन में बकरी पालन आपको एक बहुत ही महत्व रख है और लगातार वो महत्व बढ़ने लाग रही है। आजकल वो खाली कमज़ोर वर्ग या छोटो समूह ही कौन करने लाग रहे हो बल्कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय के रूप में अपनायो जान लाग रहे है। और इंगमा कठे न कठे अपनी सरकारा भी जी को है वे समय समय के ऊपर स्कीमा निकाल के व्यवसायी जी को है बिन मदद करने लाग रही है। राजस्थान में सिरोही मारवाड़ी जमुनापारी जकराना जिसी प्रमुख जी की बकरी की नस्ल ना है वे पाई जावे। सही देखभाल संतुलित आहार और सही प्रबंधन बकरी पालन को एक लाभदायक व्यवसाय

अपना देवे। के तरीके छूँ आप बकरी पालन छूँ आए लेस का, सब छूँ पहला तो दूध बेच गए। बकरी को दूध जी को है वो बड़ो पौष्टिक हुआ है, और देखो गए है कि बहुत सी बीमारियों के अंदर जिका डॉक्टर है वह भी आपने राय देवे कि बकरी को दूध पीणो चाहिए। दुधारू जी की बकरियां हैं बाने बेच गए आप बकरियां छूँ लाभ ले सका। इनके अलावा मांस जी को है वो भी बकरियां को बिके, बकरा जी का है वह मांस के रूप में बेचा जावे, ऊन खाल इन्हें बेच के भी आप आय ले सका। सब छू बढ़िया है इंगी जी की खाद हुए मिंगणियाँ जी का अपन कवा बकरी की बीट आ खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुए और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है जब आप आने खेतों में माँ गाला। तो इंगी खाद बेच के भी जिका पशुपालक भाई है वह आय ले सके। इंग माँ सब छू बढ़िया प्रबंधन आपने जरूरी है आवास को, बकरी को जी को आवास है बिंगी व्यवस्था गो जी को जिग्या हुआ बा छायादार होनी चाहिए, ढकेड़ी होनी चाहिए, की स्थान जी को है वो खुल्लो होना चाहिए, और चारे और पानी की व्यवस्था बैठे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर देवा तो पशुपालन जी को है वो आपनों कामयाब हो सी। बाड़ो जी को है वो पूर्व पश्चिम दिशा में बनावा ताकि सूरज की जी की सीधी गर्मी है और ताप है भी हूँ आप बकरियां ने बचा सका। हर व्यस्क बकरी वास्ते एक हूँ डेढ़ वर्ग मीटर को जिको जिगह है बा चाहिए हुआ है। जिका नर बकरा है या छोटा बच्चा है दुधारू बकरियां और बीमार पशुओं से हमेशा आपने अलग रखनी चाहिए। तो बंग आवास जी को है वो आपने अलग बनाना चाहिए। कोई भी अगर छोटो बच्चो या कोई नर बकरो या दुधारू बकरी है बीमार हुआ है तो बिना आप भी आवास के अंदर भेज देवा और अलग रखा। हमेशा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देवा। बकरियां को जिको समूह है वह हमेशा समूह के अंदर ही रहे, इन वास्ते साफ सफाई जरूरी है ताकि बकरियां जी की है वह बीमार ना हो, और कोई एक आधी बकरी जब बीमार है तो बीच बीमारी जी को है वह फैले ना। बर्तन आप नियमित रूप से साफ करा, बर्तन को मतलब हो गयो जिया पानी की आप खेली बना दिया तो भी खेली ने लगातार समय समय के ऊपर आप भी सफाई करता रहा, और जे कोई चारो गिलो हो गयो है या बांस मारन लग गयो है तो बीच चारे की भी आप सफाई करा और दूर रखा। मिंगणियां को जी को निस्तारण है वो आप रोजाना करा, और बने बाड़े से दूर जी का गड्ढा है बंग में डालता रहा और बटे बेड़ी करके आप बेच सका। चारे और पानी की जी की खेड़ियाँ हैं बन आप साफ रखा, आप बात पहले भी कर ली। जिका बारी और अंदर परजीवी हुए बंगी रोकथाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पशुओं के अंदर भी रोग हुए और बारे से भी रोग आवे। बारी जिका परजीवी है जिया चिंचड़ है जुआ है अंगे प्रकोप वास्ते आपने दवाई को समय समय के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। अंदर का जिका परजीवी है बाने बचाव वास्ते नियमित अंतराल पर आपने कृमिनाशक दवा जी की है बा अपनी बकरियां ने पशुधन ने प्यानी चाहिए। टीकाकरण जी को है वो नियमित रूप से आपने करवाना चाहिए। जके छू संक्रामक जी का रोग है बाने रोको जा सके, जिया फिड़किया है माता रोग है मुँह पका खुरपका ए रोग ईसा रोग है जिका संक्रामक रोग है अन आप टीकाकरण से दूर कर सका, और सही समय पर सही जानकारी से आपने टीकाकरण करवाना चाहिए। संतुलित दानों चारो सप्लीमेंट आप बिन देवता रवा। सप्लीमेंट के मतलब हो कि पशु में ताकत की जिकी चीज़ें हैं वह आप देवता रहा, जिक पशु के अंदर कोई भी कमी है तो वह पूरी होती रहे। एक बकरी की बात करा किसान भाइयों तो आप प्रतिदिन बिंग शरीर के वजन के हिसाब से 3.5% मात्रा के बराबर सूखो जी को खाद है वो आपने देनो चाहिए। इनके अलावा खेजड़ी की सांगरी लूंग बेरी गोपालो या देसी बबूल की जी की पत्तियां हैं वे भी इन कमी ने पूर्ति कर देवे। दूध देने वाली प्रजन योग्य जी की बकरियां हुए जी की ब्यान पर हुए वे तेजी से बढ़ने वाले बच्चे ने अतिरिक्त संतुलित आहार आपने देवता रहना चाहिए। 40 किलोग्राम वजन वाली जी की गर्भवती बकरी हुए बिना कम से कम 250-300 ग्राम दाणो आपने देना चाहिए। दुधारू बकरी ने 250 ग्राम दाणो निर्वाह राशन के रूप में और प्रति लीटर दूध पर 400 ग्राम दाणो उत्पादकता वास्ते आपने जरूरी हुए और वो आपने पशु ने खुआना चाहिए। बकरियां ने पीण वास्ते प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना चाहिए। अब जिया गर्मी

आसी तो थोड़ो ठंडो पानी पियावा, और सर्दियां के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखा कि आपा थोड़ो न्यायो पानी जिको है वो पियावा। इनके अलावा सर्दियां के अंदर आपा बकरी ने खुल्लो भी छोड़ा, विटामिन डी वास्ते आपा ने बकरियां ने धूप दिखानी भी जरूरी हुआ। सर्दियां के अंदर आपा 10 बजे हूँ लेके 5 बजे तक धूप में बिठा सका, और गर्मियां के अंदर आपा 10 बजे तक बारह रागे और बिंगे बाद में बाड़ा में आपने बकरियां ने बांध सका या खुल्लो भी छोड़ सका, लेकिन छायादार जगह आपा ने बा वास्ते राखनी होसी।

0: 10 बजे तक बारह रागे और बिंगे बाद में बाड़ा में आपने बकरियां ने बांध सका या खुल्लो भी छोड़ सका, लेकिन छायादार जगह आपने बा वास्ते राखनी हो सी। लवण धातु नियमित रूप छू देवा, विशेषकर जद जद पशु दूध देने लाग रहे हुए, गर्भवती हुए या बिंगी वृद्धि होने लाग रही हुए, बी समय लवण धातु देनो बहुत ही जरूरी है। बकरियां के बाड़े में खनिज लवण की ईंट जके नापा मिनरल ब्रिकवा बा रखा ताकि लवण धातुओं की जरूरत जिकी है बा पूरी होती रहे। बकरी पालन सही देखभाल और सही प्रबंधन के सागे एक सफल और बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन सके और बनन लाग रहे है। किसान भाइयों, बकरी पालन के व्यवसाय की आपन जब बात पर आ गया तो विशेष तौर छू ध्यान रखा के इंग मा अपनी सरकारा भी अपनी मदद करने लाग रही है। तो नजदीक का जिका कृषि विकास केंद्र है या जठे भी इन चीज को प्रशिक्षण देवे, सबसे पहला आपा बठे संपर्क करा और बकरी पालन को जिको व्यवसाय आपा करनो चाहवा बिंगो प्रशिक्षण जरूर लेवा। प्रशिक्षण लेन छू आपा ने के होसी कि जिकी नई तकनीक है बिंगे बारे में आपा ने ध्यान पड़ेगो और के तरीके छू आपा ने सही प्रबंधन करनो है, सही देखभाल आपा बकरी पालन की कर सका, बकरियां की सही देखभाल और सही प्रबंधन ही आपा ने इन व्यवसाय के अंदर सफल बना सी। के तरीके छू बिना आपा आहार देनो है और बी आहार ने अगर आपा आपने घरे तैयार करा तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बढ़िया होगा। आज के समय में आपा देखा कि खेजड़ी की सांगरी लूंग ए चीज़ मिलनो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बेरीगो जी को पाल है, देसी बबूल की पत्तियां हैं, ए आपा ने सुलभ तरीके से मिल जावे और आपा जद आ चीज़ों की व्यवस्था कर देंगा या बकरियां ने खुल्लो छोड़ांगा तो वह आपे आप चरण भी लाग जाएगी। इन तरीके से आपा प्रबंधन करके बकरी पालन के व्यवसाय ने कामयाब कर सका, तो इन पर आपा विशेष तौर से ध्यान देवा। अब हूँ चालू, राम राम सा, राम राम।
1: बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। कार्यक्रम खेत खलिहान में अभी आपने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की आज से इंदौर में शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद मिलेगी। ये विषय छोटे किसानों के सशक्तिकरण और वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

0: जरूरी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे, उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियावेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

सावधानियां रखनी चाहिए जिसू आप घनी दिक्कतों शू बच सका और पहली सावलचेत हो सका। इंगे वास्ते सब शू ज़्यादा जरूरी है अच्छी मात्रा में पानी पीवनो। अबार गर्मी को टेम है इन वास्ते आपने कम शू कम 3-4 लीटर पानी पीवनो ही चाहिए। इशू आपनो शरीर आपने स्वस्थ रखे और घना ही कीटाणुआ शू बचावन को भी काम करे। बहनों गर्मी को मौसम आपके सागे धूप तावड़ो और उमस ले रहा है और इन मौसम में थोड़ी सी लापरवाही लू लागनी पानी री कमी जिन्हें डिहाइड्रेशन केवे और चामड़ी री बीमारियां कारण बन सके है। इन वास्ते बहनों आपने खानो पीनो पेरावो और रोज री आदता में छोटा छोटा बदलाव कर गए आप तावड़े जिको प्रकोप है बीशू आप बच सका और आप अपने शरीर की बेसी संभाल और सच चोखे खान पान शू लू शू भी बच सका। हाँ बहनों अबार आप बात करी ही आपने 3-4 लीटर या कहवे तो 10-12 गिलास पानी लेवनो चाहिए और कई बार इसो हुए आपने तीस को नहीं लगे या काम में आप तो ध्यान को नहीं रेवे तो इसो नहीं करनो। आपने टेम सर सादो पानी है सादो पानी ना भावे तो आपने घरा बनेडो ठंडो पेय है या सादे पानी सागे सागे सागे आप नींबू रो पानी नारियल पानी छाछ राबड़ी लस्सी काची केरी गो पानो और बेल गो शरबत पीवा तो इंशु शरीर में लूण और पानी गो संतुलन अच्छो बनो रेवे। और बहनों आपने गर्मी में ज़्यादा चा कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक शू बचनो चाहिए वो शरीर में पानी की मात्रा ने सुखावन को काम करे। और आप खान में बदलाव की बात करा तो बहनों अबार गर्मियों में हल्को और बेगी पचन आलो भोजन लेवनो चाहिए। ज़्यादा मिर्च मसाला तेल तलेड़ो भोजन नहीं करनो चाहिए वो पेट खराब भी कर सके है। इंगे सागे है बहनों मौसमी फल उगया साग सब्जियां जिया मतीरो ककड़ी खीरो संतरो अंगूर जिया फल आपा ने लेवना चाहिए। इंगे मायने घणो पानी होवे और सब्जियां माय अगर देखा तो जिया घिया लौकी तुरई कद्दू ए आपने बेसी खाना चाहिए और बासी खाणो तो लेवनो ही नहीं चाहिए। घनी बारी गर्मी में भोजन खराब हो जावे इन वास्ते इन बात को भी आपने ध्यान रखनो चाहिए और ताजो बनेड़ो ही जीवनो चाहिए। गर्मियां तो बहनों घनी हैं पर आप थोड़ी सावधानी सागे आपके शरीर ने दिल ने स्वस्थ रख सका और इं पर आप जानकारी भी लेवता रेशा पर पहली सुन लियो ओ चोखो सो गीत।

तावड़ा धीमो पड़ जा रे। बहनों अब आर थे ओचो खुशो गीत सुनो। आपा बात करन लाग रहा हा गर्मी के मौसम में सावधानियां की। बहनों आपा खान पान की सावधानियां की बात करी ही, इंगे सागे सागे आपा ने पहरावो और चामड़ी की संभाल किया रखा इं पर भी आपा बात कर सा। तो बहनों सब शू पहली गर्मियों में कपड़ो गाबो सूती कॉटन गा ढीला ढाला और हल्के रंगा कपड़ा पहनना चाहिए। इंगे सागे जद भी बारे धूप में निकलो तो कपड़ो गमछो जिको हल्को सूती हुए वो जरूर ही बांधो और माथे पर टोपी साफो जरूर रखो और तीखी चुभती धूप में आपने ढक के रखो। और हो सके तो एकदम जिकी दोपहरी माई हुए दोपहरी हुए बिंगे माई ने बारे जावणगी टाली करो। और जावणो पड़े तो सागे पानी वाली केतली और अंगोछो ले गई बारे जाओ और आपने सूती कपड़े छू ढक के रखो। और हो सके तो छतरी या कोई छातो है वो भी आप सागे रख सका वो भी बचाव करे। और गर्मी में गर्मी में जिकी गाड़ियाँ होवे आप खड़ी करो तो भी मैं टाबरा ने अकेला ना छोड़ो। बंद गाड़ी को जिको तापमान है बहनों वो घणो ही बेगी बद जावे जिको जानलेवा हो सके। और इं शरीर में लू लागण का लक्षण दिखे जिया तेज माथो दुखणो चक्कर आवणो बुखार चढ़णो उल्टी आवनी मुँह सुखो होवणो कमजोरी लागनी या बेहोशी आवनी ये सगला लू का लक्षण हुए तो बेगी शू बेगी डॉक्टर ने जांच करावनी जरूरी हुए जिशु बीमारी ने जल्दी पकड़ो जा सके। और ई मौसम में घर में टाबर है बडेरा है या कोई गर्भवती महिला है बिंगो भी खास ध्यान रखनो चाहिए कि नहीं बेहोशी आवे चक्कर आवे तो बिना सब शू पहली तो बहनों ठंडी जगह पर बिठा दियो या सुआ दियो और जिका कपड़ा है भी ढीला कर दियो। सागे सागे बिने नमक खांड गो घोल हुए या फिर हो सके ORS गो घोल हुए वो देवनो घणो जरूरी हुए। घर में ही कोई नवजात शिशु है बिंगो भी गर्मियों में ध्यान रखनो चाहिए ज़्यादा कपड़ा नहीं पहरावना चाहिए। तो बहनों इसी छोटी छोटी बात आप ध्यान में रख गए गर्मियाँ शू बचाव ले सका। हाँ बहनों गर्मियों को मौसम भी चोखो निकल सके जे आप थोड़ी सी सावचेती रखा। सावचेती बहनों सुरक्षा है चोखो खान पान रख गए और तावड़े शू बच गए आप इसी गर्मी में भी राजी खुशी और राता माता रह सका। तो बहनों बातें करता रेशा पन पहली सुनो ओ चोखो सो गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कड़वी बात भूल जाओ सा, मन में मिश्री घोल जाओ सा। कड़वी बात भूल जाओ सा, मन में मिश्री घोल जाओ सा। राड कलेश में काई राख्यो है, हेत प्रेत शू जी लो सा। बीत गई जिकी बीत गई, उन बात माठे माथे माटी नाको। चार दिनारी जिंदगानी है, हिया में कड़वाहट मत राखो। जिको पानी बह गयो नदी गो, वो पाछो कदे ही नहीं आवे। कड़वी बातें याद राख्या शू, आपनों ही जी बल जावे। छोड़ो अबार पिछली बातें, मुखशू मीठो बोल जाओ सा। कड़वी बातें भूल जाओ सा, मन में मिश्री घोल जाओ सा। बहनों, जिंदगी को सफर घणो ही लंबो हुए। इमें आपने घना ही तरिया तरियांगा लोग मिले। कोई आपने घणो प्यार देवे और कोई आपने मन में दुखावन वाली कड़वी बात कह देवे। पर बहनों, सच्ची बात आए जिको मिणक कड़वी बातें ने और दुखा ने दबार मन में बैठो रेवे, वो आपको ही नुकसान करे। इन वास्ते जी की आप आज बात कर सा घनी ही जरूरी है। कड़वी बातें ने भूलनो क्यों जरूरी है? बहनों, कणी साची कही है, बीती ताही बिसार दे, आगे गी सुधी ले। यानी जी की बीत गई, बिना आपने भूल गए आगे बढ़नो चाहिए। एक बात है बहनों, आप सफर में ही जावा और आप गए बेग में कचरो कूड़ो भाटा पत्थर भर लिया, जिका आपने वास्ते रास्ते में कोई जरूरी भी कोनी, तो आप बताओ सूक्ष्म यात्रा कर सकांगा? इं ही बहनों, जिंदगी को सफर है, वो भी इसो ही सफर है। इमें आप बीती बातें धोखो पुराना मन मुटाव ले गए चालशा दिमाग पर, तो आप कदी खुश को नहीं रह सका। पुरानी बातें ने गांठ बना गए राखनो इसे जहर के बराबर हुए। जिन्हें पिया तो आप हाँ याद कर गए घोट घोट गए और सोचा सामे आले को नुकसान हुए, पर असल माई सामे आले को कोई नुकसान को नहीं हुए, आपनों खुद को ही नुकसान हुए। बहनों, आपनों चैन सुकून छिन जावे और आपनों आज खराब हो जावे। बहनों, कड़वी बातें भूलन का घना ही फायदा है। आपकी शांति खातर आपने भूलनो पड़े। आपा की ही बातें भूल गए आगे बदशा, तो आपने हल्को महसूस होसी। आपने इन वास्ता पुरानी बातें ने भूल गए आगे बदनो चाहिए। के की बदलो लेवनो मैं की बहादुरी को नहीं। बहनों, आगे बढ़ गए माफ करण मैं अलग पुण्य होवे। इन वास्ते सगला सागे मन मुटाव खत्म कर गए आगे बदनो चाहिए और मीठा मीठा बोलना चाहिए। इन वास्ते इन बात पर ही आप सुन लिया वो चोखो सो मीठो मीठो गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों आज के दौर में मोटापो और खास करके पेट की चर्बी एक घनी मोटी समस्या बन चुकी है। बदलतो खावन पीवन और बैठ बैरी नौकरी आज हर दूसरे मिनक गए बढ़ते पेट की चर्बी को कारण बनन लाग रही है। बहनों पेट की चर्बी देखन में तो बुरी लागे ही है, सागे सागे अपने शरीर में घनी बीमारियां को कारण बने। जी हाँ, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और घनी दिल की बीमारियां मोटापे से ही आवे। बहनों पहलो सुख निरोगी काया, इन वास्ते पेट की चर्बी ने कम करनो केवल सुनो लागन खातर ही को नहीं हुए, इंगे सागे सागे अपनी तंदुरुस्ती खातर घनो ही आवश्यक है। इन वास्ते आपने निरोगी रेवनो तो आपने पेट की चर्बी जिकी है वा कम करनी घनी आवश्यक है। तो बहनों सबसे पहली जरूरी है खावन पीवन की आदता में सुधार करनो। बहनों चर्बी ने कम करन खातर 70% जिको काम है वो अपनी रसोई शू ही शुरू होवे। खाने मायने जितो हो सके मीठे और मैदे शू परहेज करनो घनो जरूरी है। खांड, चीनी, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक शू और जिका डब्बा बंद जूस है, मैदे शू बनड़ी चीज़ें हैं जिया बिस्कुट, ब्रेड पेट की चर्बी ने सब शू पहली बतावे। इंगी जगह थाने मीठे में अगर कदी जिया जी आई जावे तो थे शहद, गुड़ और खजूर को सीमित मात्रा में सेवन कर सको हो। और इंगे बाद दूसरी चीज आपा देखा तो तलेड़ो भोजन बंद करनो जरूरी है। तेल वाली चीजा जिया समोसा, कचौड़ी, भुजिया, क्योंकि बहनों आपा राजस्थान में रेवा और अठे गो मनुआर के दियो या की के दियो तेल घी खावन की आदत हुए, पर जे चर्बी घटावनी है तो आ पर अंकुश लगावनो पड़सी। एक पानी शुरीस ना रखो, टेम टेम पर पानी पीवता रहो। आपा पहली भी बात करी ही कि गर्मियां को टेम है तो कम से कम 8-10 गिलास पानी तो पीवनो ही चाहिए। और सागे सुबेरे सुबेरे तड़के उठ गए साफ हवा में सांस लियो, योग कर सका आपा, प्राणायाम, कपाल भारती जैसा जी का योग है वे पेट की चर्बी ने कम खातर करन खातर सब शू बढ़िया रेवे।

और मैनू एक रामबाण उपाय थाने बताऊं, पेट की चर्बी कम करण का अतर नून आयोजित को पानी हुए सुबेरे सुबेरे भी मैं नींबू और शहद रलार लेवन शू पेट की चर्बी कम हुए है। तो बहनों आपा जानकारी की बातें करता रेशा, पर नींबू पर मना एक चोखो से निम्बूड़ो आड़ो आपनों जी को गीत है वो याद आयो है, तो लियो सुनो वो चोखो सो गीत।

अभी आपने कार्यक्रम सुना घर आंगन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Gaikwad's century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Varma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. Five-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित

0: बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में

0: पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जेम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार

0: कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हीरा पन्ना। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। जॉनी मेरा नाम, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत इंदिवर का है और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था अनजान ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए आंखें फिल्म का ये गीत सुनिए, आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत साहिर का है और संगीत रवि का।

अभिमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी मनहर उदास और लता मंगेशकर की। गीत के बोल मजरू के थे और संगीत तैयार किया था सचिन देव बर्मन ने। फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं एक बार फिर मजरू का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का है, आवाज़ किशोर कुमार की और

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

सामिन आदवर्स, ये आकाशवाणी है। सहपहर के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशात का अब आगाज़ होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। हमारी नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से।

3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम अदबनुमा और शाम 4 आप लुत्फ़अंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशे की जाएंगी और शाम 5 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप आसिया मैमुना से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज से मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद की तय अहद बस्ता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज़्ज़म निज़ाम चला रहा है जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे परवथेनैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और सरकार चलाने में उसकी फौज के बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फौजी सरगर्मियों की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैन-उल-अक़वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे जिसमें छोटे किसानों

खवातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सिफारती राबतों पर पुरउम्मीदी का इजहार करते हुए कहा है कि वाशिंगटन एक अहम कामयाबी हासिल करने के करीब है। एक इंटरव्यू में जनाब ट्रंप ने कहा कि वो एक बहुत पायदार, ताकतवर और बहुत अच्छे समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज्यादा मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हालिया मिजाइल हमलों के बावजूद बाहमी बातचीत अब भी आगे बढ़ रही है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया है कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत निजात लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम करने पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा असलाहत और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी की ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकिरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह की लाइल्मी या हिमाकत की वजह से ये अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेस ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। जुनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। ये जलजला फिलीपींस के सबसे ज्यादा आबादी वाले दूसरे बड़े शहर मिंडानाओ में आया, जिससे 20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इनमें से बेशतर लोग को एमरजेंसी पनाहगाहों में जाना पड़ा। फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा है कि मुतालिका एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई में तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने मुतासिरा इलाकों में स्कूली क्लासें मुअत्तल किए जाने का भी हुक्म दिया है। वहां ये जलजला ऐसे वक्त आया है जब फिलीपींस में स्कूली साल का ये पहला दिन था। कांगो के मशरकी हिस्से में हुकाम की जानिब से इबोला फैलने के ऐलान के एक महीने से भी कम अरसे में 100 से ज्यादा अफराद की जानें तलफ हो गईं। इबोला की जिस बीमारी में ये अमवात हुई हैं वो एक नायाब वायरस बर्डी डुग्यो की वजह से हुई हैं, और इसका जायर वायरस की तरह ना तो कोई इलाज है और ना इसके लिए कोई मंजूरशुदा टीका है। कांगो में माजी में 16 बार जायर वायरस की वजह से ये बीमारी फैली थी। इसी दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल एडहनॉम गैब्रियसिस इन दिनों युगांडा के दौरे पर हैं ताकि वो कांगो में फैली हुई इबोला बीमारी से निपटने के लिए मुल्क की तैयारियों का बजाते खुद जायजा ले सकें। अक्वामे मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ने पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हमले बंद करें, ज्यादा से ज्यादा जब्त तहमुल से काम लें और ऐसा कोई ना कदम ना उठाएं जिससे हालात मजीद खराब हो जाएं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादियों और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द एक हकीकत बनने वाला है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने इस अहम प्रोजेक्ट के हतमी मरहले का आगाज किया और इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाले रास्ते को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग की बदौलत श्रीनगर और लेह का रास्ता 12 महीने दस्तियाब होगा, जिससे सैर सियाहत, नकल हरकत और मकामी मीशत को तकवीत मिलेगी। जोजिला टनल मुकम्मल होने के बाद

0: एशिया में अपनी नौयत का ये सबसे बड़ा दो तरफा रास्ता होगा। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में PMSMA के 10 बरस निगहदाश्त की एक तिहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब निफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की ज़ेर क़यादत इस पहल PMSME का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। इस स्कीम का मकसद हमल को दरपेश खतरात का पहले से पता लगाए जाने और इसकी रोकथाम करके जचगी और इसके बाद की अमवात की शरह में कमी लाना है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और इसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़रा ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में।

पारसमनी फिल्म का ये दो गाना सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। नगमा निगार थे असद भोपाली, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और ये सुनिए फरीब फिल्म का नगमा सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, नगमा निगार असद भोपाली।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में आप सुन रहे थे फरेब फिल्म का ये नगमा, और इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर आप हमारी नशा सुन रहे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं हम आज का ये प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है अदब नुमा, यानी इसमें बातें होती हैं कुछ अदब के हवाले से। अदब की कुछ असनाफ भी हम आपकी नज़र करते हैं, जैसे कि कलामी शायर, और साथ ही साथ कोई ना कोई अफसाना भी हम आपको सुनवाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और आज सबसे पहले आपकी नज़र करते हैं चंद खूबसूरत अशार। आज के हमारे शायर हैं जनाब हसन काजमी। आइए सुनते हैं उनसे उनका कलाम।
2: सामीन की खिदमत में गजल के एक मतला और चंद शेर पेश कर रहा हूँ। मतला देखिएगा कि मेरा मेयार है,

0: क्या बात है, बहुत मुश्किल काम आपने अख्तियार किया, वाह वाह।
1: बहुत दुश्वार है लहजा गजल का। और
0: खूबसूरत
1: लहजों
0: है
1: की
0: ना।
1: भीड़ में एक शेर देखिएगा कि

0: गजल का एक लहजा ये भी देखिए
1: जी ऐसा
0: कि
1: सुन लीजिए।
0: बरतना इसका आसान भी नहीं है। आप खुद इस मिजाज के शायर भी हैं और
1: बहुत
0: मुस्तना
1: बढ़िया
0: शायर हैं।

0: बहुत खूबसूरत गजल आपने
1: बहुत बहुत
0: पेश की
1: शुक्रिया।
0: हमारे सामीन के लिए। हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि कुछ और कलाम पेश करें,
1: ये भी
0: अता
1: एक
0: फरमाएं।
1: नई गजल है, इसका लहजा थोड़ा सा तब्दील,
0: जी
1: लीजिएगा मुलायफ़ माइएगा।

0: क्या बात है
1: सुने बिस्तर पे कल रात भर नींद करवट
0: आय हाय हाय हाय बहुत खूबसूरत
1: बदलती
0: शेर।

0: बहुत बहुत बहुत, क्या कर्म है, क्या आरजू है,
1: सोनी
0: क्या
1: की
0: बयान है, क्या उसलूब है, वाह वाह वाह
1: सोनी
0: वाह।
1: यादव, मांग सोनी की सोनी रही, आरजू दिल में पलती रही।
2: समीन कलामी शायर के तहत अभी आपने जनाब हसन काजमी से उनका कलाम सुना। उम्मीद करते हैं कि उनका ये कलाम आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ही था तो आपने कागज़ और कलम लेकर बैठना था ना, कुछ अशार आपने नोट कर लेने थे ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। हम तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि कुछ शेर अगर पसंद आते हैं तो फिर हम उन्हें नोट कर लेते हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सुनने वालों को ज़रूर वो शेर सुना देते हैं, नज़्म सुना देते हैं। यही सिलसिला ज़िंदगी में चलता रहता है। खैर, ये तो थी बात कलाम की यानी शेर व शायरी की, और इसी प्रोग्राम यानी अदब नुमा का जो अगला सेगमेंट होता है वो होता है अफसाना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहतरमा निगार अजीम का ये अफसाना जिसका उनवान है शगुन। आइए उनसे ही सुनते हैं उनका ये अफसाना शगुन।
3: इंदर और कामनी की मुलाकात हेमा की बर्थडे पार्टी में हुई थी। हेमा ने इस पार्टी में सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को ही मदद किया था, लेकिन इंद्र हेमा का दोस्त होने के साथ साथ उसका कज़न भी था और हमराज भी। इस पार्टी में सब जमा दोस्त एक दूसरे से मुतारिफ थे, इसी सबब माहौल में बेतकल्लुफी और बेबाकी रची बसी थी। हर तरफ मुस्कुराहटें बिखरी हुई थीं। खाने और पीने की मुख्तलिफ अशिया और उनकी खुशबुएं और दीगर तमाम लवाजिम, पुरशबाब महकते माहौल में मगरबी संगीत की धुनों ने समा बांध दिया था। ऐसा महसूस होता था इंद्र देवता ने खुद धरती पर उतर कर हुस्न व शबाब का दरबार सजा लिया है, लेकिन खुद इंद्र इस दरबार में अकेला था। हेमा अपने दूसरे दोस्तों और साथियों में मसरूफ थी। एक दूसरे को चाहने वाले जवान जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मदमस्त थे। ऐसे में इंद्र इस दरबार में तन्हा था, क्योंकि उसका कोई साथी या दोस्त इस महफिल में मौजूद नहीं था। वो तन्हा ही दूर से इन नाचते थिरकते जवान जोड़ों को देख रहा था। पुरशबाब चेहरों में उसे कामनी बिल्कुल अलग ही नज़र आ रही थी। ऐसे हुस्न को उसने पहली मर्तबा देखा था, और पहली बार ही उसने किसी के लिए दिल की तेज होती हुई धड़कनों को महसूस किया था। कामनी

भी बेइंतहा खूबसूरत, बिल्कुल अप्सरा, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी गहरी झील सी आंखें, मुस्कुराते लब, उभे रुखसार, मुतनासिब जिस्म पर फपती आसमानी साड़ी। रक्स करते करते अचानक उसकी निगाह इंद्र पर पड़ी, जो उसी को देख रहा था। लम्हा भर को वो रुकी, बाहें ढीली पड़ी और प्यार भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए वो इंद्र के पास आई और बोली, क्या आपको अकेलापन बहुत पसंद है? जी नहीं तो, मैं अकेला नहीं था, आप मेरे साथ थीं। ओह, तो आइए रक्स करें, वो मुस्कुराते हुए बोली। इंद्र तो चाहता ही यही था। इंद्र की धड़कनों ने कामनी को और कामनी की धड़कनों ने इंद्र को बांध लिया। वो दोनों एक दूसरे में समा गए। उनको देखकर ऐसा महसूस होता था वो वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। रात का आखिरी पहर बीत चुका था, महफिल मुंतशिर होने लगी थी। इंद्र ने कामनी को उसके घर छोड़ने का ऑफर किया। रुखसत होते हुए इंद्र ने कहा, क्या हम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं? क्या अगली मुलाकात की उम्मीद की जा सकती है? यकीनन, मुझे आपकी शख्सियत ने काफ़ी मुतासिर किया है। हमारी अगली मुलाकात ज़रूर होगी, और फिर दोनों की ये पहली मुलाकात दोनों के लिए बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि इंद्र एक तरफ तो कामनी के हुस्न पर फिदा था और दूसरे ये बेबाकाना तर्ज ज़िंदगी से बहुत मुतासिर। वो ऐसी ही ज़हीन, खूबसूरत, आज़ाद और पढ़ी लिखी लड़की चाहता था, और कामनी उसकी तमन्ना का फल थी। कामनी भी इंद्र की मर्दाना पुरवकार शख्सियत पर फिदा हो गई थी। उसमें वो तमाम खूबियाँ थीं जिसकी तमन्ना एक लड़की करती है। अब वो दोनों हर जगह, हर महफिल और हर पार्टी में एक साथ नज़र आने लगे। अब हमें शादी कर लेना चाहिए, एक दिन इंद्र ने कामनी से कह ही दिया। कामनी ने भी शादी के लिए खुले दिल से हाँ कहकर रजामंदी का इजहार किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा, क्या तुम मुझे पूरी तरह समझ चुके हो? हाँ, क्यों नहीं, हम कई माह से एक दूसरे को देखते जानते आ रहे हैं। देखो इंदर, देखने समझने और बरतने में बहुत फ़र्क है। बस इतना समझ लें कि अपनी ज़िंदगी में मैं किसी भी तरह की पाबंदी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंद्र तो खुद भी आज़ादाना मिजाज का आज़ाद पंछी था, ना पाबंदी में रखना पसंद करता था और ना रहना, लिहाजा उसने कोई उज्र इस सिलसिले में पेश नहीं किया। लेकिन हेमा को लग रहा था कि इंद्र जल्दबाजी से काम ले रहा है। उसने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की कि तुम दोनों को थोड़ा और वक्त एक दूसरे को देना चाहिए, नज़रियात का टकराव ज़िंदगी अजीरन कर देता है। लेकिन इश्क की पेंगें इतनी बढ़ चुकी थीं कि उतार मुमकिन न था। उन्होंने हेमा को इत्मीनान दिलाया कि नज़रियात का टकराव हमारे दरमियान है ही नहीं, हम दोनों हम ख्याल हैं। लिहाजा हेमा की बर्थडे पार्टी में हुई इस पहली मुलाकात पर शादी की मोहर सख्त हो गई। दिन, माह और साल हंसी खुशी बीतने लगे। खुद हेमा और उसके कई साथियों की शादियां इन 5 बरसों में हो गई थीं। हर पार्टी और हर शादी में ये कुंवारे और ब्याहता जोड़े जमा होते तो एक हंगामा बरपा हो जाता, लेकिन अब धीरे धीरे ये पार्टियां और तफरीगाहें सूनी होती जा रही थीं, क्योंकि अब सब गृहस्थी के बंधन में बंधने लगे थे। सिर्फ इंद्र और कामनी ही आज़ाद पंछी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। कामनी माँ बनना नहीं चाहती थी, उसे ज़िंदगी का ये जंजाल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका ख्याल था कि बच्चा पैदा करके औरत का हुस्न, उसकी दिलकशी, शौखी और आज़ादी सब कुछ गायब हो जाती है। हेमा वैसे भी खुद परस्ती का शिकार थी, वो रिश्तों की हकीकतों से नाआशना थी। वक्त आगे बढ़ता गया। इंद्र सोचता था कि वक्त के साथ हेमा बदल जाएगी और माँ बनना कबूल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 और फिर 8 बरस बीत गए, हेमा भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। बहुत दिनों बाद फिर पुराने दोस्त जमा हुए थे, क्योंकि हेमा के बेटे बबलू का पहला जन्मदिन था। जर्क बर्क, हंसती मुस्कुराती जवानियों के दरमियान कामनी को अपना हुस्न मान पड़ता दिखाई दिया, जबकि हेमा, दीपा और सोनाली एक एक दो दो बच्चों

0: की माएं बनने के बाद भी फूल की तरह खिली हुई थीं। वो और उदास हो गई। उसने अपनी इस उदासी को मेकअप की गाढ़ी तहों में छुपाने की कोशिश की। उसकी शोखियाँ और शरारतें उदास होकर चिड़चिड़ेपन में तब्दील होने लगी थीं। इंद्र ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। उसने एक दिन अपनी कजिन हेमा को अपनी परेशानी बताई। कामनी हेमा की बचपन की सहेली थी, उसे अच्छी तरह जानती थी। उसके ख्याल और एहसासात उससे छुपे नहीं थे। वो पागल है, हेमा बोली। वो हमेशा से ही बच्चे पैदा करने के खिलाफ थी। ये उसके दिमाग का फितूर है जो अब तक निकल जाना चाहिए था। मैं एक मर्तबा फिर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। इंद्र तुम परेशान ना हो। इधर इंद्र गया और उधर कामनी दाखिल हुई। हाय हेलो के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ी। रोने के बाद उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ तो उसने खुद को संभाला। अब बता क्या हुआ, हेमा ने पूछा। मैं बदसूरत और बददिमाग होती जा रही हूँ। डॉक्टर कहता है डिप्रेशन का शिकार हूँ। इंद्र भी मेरी वजह से परेशान है। तू ही बता मैं क्या करूँ हेमा। कामनी, ना तू बदसूरत है ना बददिमाग और ना डिप्रेशन का शिकार। जिंदगी गुजारने का ज़रा सा अंदाज बदल दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुदरत से लड़ना मुनासिब नहीं। देख, शादी से पहले लड़की बंद कली होती है और शादी के बाद अध खिली कली, और ये अध खिली कली फूल तभी बनती है जब वो माँ बनती है। माँ बनकर उसके जिस्म का अंग अंग निखर जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उसके हुस्न और एतमाद में इजाफा हो जाता है। बस तो कुदरत से लड़ना छोड़ दे और माँ बनना स्वीकार कर। अभी उम्र नहीं निकली, चंद बरस और गुजर गए तो बहुत देर हो जाएगी और तब यह अकेलापन तुझे खा जाएगा। तब तू जरूर बदसूरत, बददिमाग और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, समझी। हेमा की बातों का कामनी पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उसने खुद को सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया। इंद्र ने भी उसकी इस तब्दीली को महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे दोनों के चेहरों से बेचैनी आया थी। एक रोज़ नाश्ते की मेज़ पर खिलाफ तवक्को कामनी को खुश और मुतमईन देखा तो इंद्र ने वजह पूछ ही ली। क्या बात है, बहुत खुश हो आज? हाँ बहुत। क्यारी में लगा कई माह का पतझड़ गुलाब ऐसा कचकचा कर फूटा है कि तबीयत खुश हो गई। मैं तो उसे उखाड़ कर फेंकने वाली थी। इंद्र ने कामनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। समझ लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, ये शगुन बहुत अच्छा है। और फिर दोनों एक दूसरे में समा गए।
1: समीन, अभी आपने मोहतरमा निगार अजीम से उनका ये अफसाना सुना जिसका उन्वान था शगुन। जज्बाती पैराए में बयान की गई एक खूबसूरत कहानी थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अब आखिर में सुनते हैं एक गज़ल।

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी। इसके साथ ही अब इजाजत दीजिए आज का अदब नुमा प्रोग्राम खत्म करने की। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: अभी भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, पेश कर रही थी सबीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। और लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आगाज किशोर कुमार।

आप सुन रहे थे अपना बना के देखो फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और लीजिए आप सुनिए बॉक्सर फिल्म का नगमा असद भोपाली का लिखा हुआ है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश छैला बाबू फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमा निगार असद भोपाली, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और इस जसुनी गुड्डी फिल्म का नगमा वानिजा रहम और साथियों की आवाज़ों में नगमा निगार गुलजार मौसीकी वसंत देसाई की।

गूंज उठी शहनाई, इस फिल्म का दो गाना सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, नगमा निगार, भरत व्यास, मौसीकी वसंत देसाई की।

अर्धांगिनी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। वसंत देसाई की थी मौसीकी। इसी मौसीकी में एक और नगमा आपकी नज़र करते हैं। फिल्म है स्कूल मास्टर, आवाज़ें तलत महमूद और लता मंगेशकर की। नगमा निगार प्रदीप।

धुन धागी नक धागी नक धागी नक धागी नक।

तलत महमूद और लता मंगेशकर का गाया हुआ। भरत व्यास ने इस नगमे को कलमबंद किया, मौसीकी वसंत देसाई की थी। और जब सुनी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये नगमा।

यह इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म है दो बहनें, आवाज़ लता मंगेशकर की, मौसीकी वसंत देसाई की।

अरे सुनिए, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़िराअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज से मुल्क भर में तकरीबात मनाई जा रही हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार इत्माद, तरक्की और आवाम की बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए सख्त नुक्ताचीनी की है कि वह नफरत का एक मुनज़्ज़म निज़ाम चला रहा है, जिसके ज़रिए वह अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तिलाह का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगर्म मिलिटेंट ग्रुप को फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देकर सरकार की शय पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा पार्वतनेनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और सरकार चलाने में उसकी फ़ौज के बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फ़ौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फ़ौजी सरगर्मियों की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारिजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेज़ात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज़ किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदाम से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत नीज खिदमात को नई मार्केट तक पहुँचाने में सहूलत फराहम हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अफराद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 44 सिफारत खाने और कौंसिल खाने खोले गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हुकूमत की इन कोशिशों से भारतीय अफराद को बैरून मुल्क सफ़र करने में भी आसानी फराहम हुई है। बैन अलाक़वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़िराअत, आला अहदेदार और माहिरीन

शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूदात पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़िरात के वज़ीरों के माबेन खसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ज़ोजिला टनल प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द एक हकीकत बनने वाला है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वज़ीर नितिन गडकरी ने इस अहम प्रोजेक्ट के हतमी मरहले का आगाज़ किया और इसे एक तारीखी लम्हा करार दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाले रास्ते को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि इस सुरंग की बदौलत श्रीनगर और लेह का रास्ता 12 महीने दस्तयाब होगा, जिससे सैर व सियाहत, नकल व हरकत और मकामी मईशत को तकवीत मिलेगी। ज़ोजिला टनल मुकम्मल होने के बाद एशिया में अपनी नौइयत का यह सबसे बड़ा दोतरफा रास्ता होगा। जम्मू कश्मीर के आला हुकाम ने आइंदा शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को खुशसलूबी और कामयाबी से कराने के इंतजाम का जायजा लिया है। जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार और जम्मू डिवीजन जोन के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भीमसेन तूती ने सिक्योरिटी बंदोबस्त और इंतजाम का जायजा लेने के गरज से कल रामबन ज़िले का दौरा किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के साथ सिफारती राबतों पर पूरी पुरुम्मीद का इजहार किया है कि वॉशिंगटन एक अहम कामयाबी हासिल करने के करीब है। एक इंटरव्यू में जनाब ट्रंप ने कहा कि वो एक बहुत पायदार, ताकतवर और बहुत अच्छे समझौते के काफ़ी करीब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका की तरफ से ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी बमबारी के मुकाबले में ज़्यादा मौसर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर हालिया मिज़ाइल हमलों के बावजूद बाहमी बातचीत अब भी आगे बढ़ रही है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और क़याम अमन के बारे में हतमी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजह कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता, नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेस ईरान के खिलाफ हमले रोक रही है। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने मगरबी एशिया पर में फिर से कशीदगी बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने फरीकैन पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर हमले बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ब्त तहम्मुल से काम लें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीज़ा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फ़ीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फ़ीस गैरकानूनी है। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 37 हो गई है, जबकि 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। कांगो के मशरक़ी हिस्से में हुकाम की जानिब से इबोला फैलने के ऐलान के एक महीने से भी कम अरसे में 100 से ज़्यादा अफराद की जानें तलफ हो गईं। इबोला की जिस बीमारी में ये अमवात हुई हैं वो एक नायाब वायरस बुर्दी दोगियों की वजह से हुई हैं और इसका ज़ाहिरे वायरस की तरह न तो कोई इलाज है और न इसके लिए कोई मंजूरशुदा टीका है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में PMSMA के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज़ करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल के दौरान नौजवानों, ख़वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया है। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़िराअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में

0: शुरू हो गई है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में पेशरफ्त हुई है और कश्मीर वादी और लद्दाख के दरमियान हर मौसम में काम करने वाला रास्ता जल्द हकीकत बनने वाला है। इसी के साथ उर्दू का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं, हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पज़ीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की।

नमस्कार युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से। दोस्तों, आकाशवाणी की 90 वर्ष की ये यात्रा कितनी प्यारी रही, कितनी सुंदर रही, ये पिछले कई समय से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विभिन्न केंद्रों के कार्यक्रम भी देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें पढ़ने को भी मिल रही है, लेकिन जो बात इस गाने के माध्यम से हम आपको कहने वाले हैं उसे आप पहले सुनें और देखें कि ये रेडियो अपना कितना सच्चा दोस्त है।

दोस्तों, गीत अभी आपने सुना। बात करें सबा अकबराबादी के इस शेर के साथ कि जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सवा एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। दोस्तों, हमारे जीवन की तन्हाइयों में जो सबसे ज्यादा हमारा साथ देने वाला है वो दोस्त रेडियो है। रेडियो ने दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे ऐसे लोगों को अपना हम सफर बनाया और ऐसे लोगों ने उस रेडियो से दोस्ती की जिन्हें यूं लगता था कि हमें और कोई दोस्त मिले न मिले, पसंद करे न करे, लेकिन रेडियो ने उन्हें अपना सच्चा दोस्त बनाया। वास्तव में रेडियो हम सबका प्यारा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसने न सिर्फ हमारा मनोरंजन किया, हमें ज्ञान और सूचना भी दी और ऐसी पुख्तगी के साथ समाचार हम तक रेडियो ने पहुंचाए जिनमें किसी तरह का कोई मिर्च मसाला नहीं। सच्ची और पक्की न्यूज़ रेडियो हमें देता है। ये रेडियो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। न जाने कितने सालों तक ये इसी तरह से हमारे साथ हम कदम बनकर चलता रहा है। कितने प्यारे गाने हम इस रेडियो पे सुनते हैं, जैसे ये गाना। ऐसे आप सुनेंगे तो आप मानेंगे कि वाकई जावेद अख्तर का लिखा कितना प्यारा गाना है ये।

कि वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। वाकई ये दोस्त हमारे कितने अच्छे दिनों का गवाह है, या हमारे इस दोस्त रेडियो ने हमें कितने अच्छे दिन दिए हैं। रेडियो पर बजने वाले गाने और उन गानों को लिखने वाले गीतकार, जिस भाव को लेकर वो गाना लिख रहे हैं, असल में वो भाव उन अनपढ़ ग्रामीणों के लिए सच्चा भाव बन जाता है जब वो खेत की मेड़ पर रखे रेडियो के साथ गुनगुनाते हैं और ये महसूस करते हैं कि हमारे साथ काम करने वाला एक साथी और है जो गा रहा है और साथ ही हमें काम भी करवा रहा है। ये है हमारा रेडियो। दोस्तों, रेडियो से प्यार करने वाले न जाने कितने सारे दोस्त इस रेडियो के माध्यम से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, जो कितनी दूर से इस रेडियो के माध्यम से इस आवाज़ को सुनकर एक मित्रता साथ लेते हैं और उस मित्रता को कितनी दूर तक, कितनी देर तक निभाते भी हैं। आइए रेडियो से प्यार करने वाले लोगों के लिए एक प्यारा सा गाना हम और प्ले करें।

बात हम रेडियो की कर रहे थे। रेडियो हमारा एक ऐसा दोस्त जिससे एक बार दोस्ती होने के बाद दोस्ती को तोड़ने का कोई कारण भी हमारे पास नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ें हमें पसंद आती है वो सारी चीज़ें इस दोस्त से हमें मिल जाती है। फिर दोस्त से शिकायत हम किस तरह करें। रेडियो ने यूं समझें कि भारत की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसके अलावा हमारा जो लोक है, उस लोक की जो बातें हैं, वो सारी बातें इस रेडियो के माध्यम से हमें मिली। फिर दूसरा, हमारे जो कलाकार हैं, वो चाहे लोक कलाकार हों चाहे सुगम संगीत के गाने वाले हों, इन सबको रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से उन्होंने और बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ। रेडियो के ऊपर जब कोई नाटक हम सुनते हैं तो उस नाटक को सुनते हुए अपने आप से अभिनेता अभिनेत्री के चेहरे हम तय करते हैं कि ऐसा दिखने वाला हो सकता है, ये ऐसे दिखने वाली भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री हो सकती है, इस कहानी के बीच में कहीं हम अपने आप को फिट कर बैठते हैं। ये रेडियो की खासियत है, ये रेडियो की खूबी है। रेडियो ने अंतर्मुखी व्यक्ति की आवाज़ बन के उसकी पहचान दूर दूर तक करवाई, ये रेडियो की क्षमता है। बहरहाल गाना एक और सुने हम, फिर करेंगे कुछ और बातें।

महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में आपने शकील आज़मी का लिखा ये गाना सुना। दोस्तों, युवा वर्ग को अगर हम विचारों की स्वतंत्रता देते हैं तो ये एक प्रगतिशील और सशक्त समाज की नींव डालने वाला होता है। जब युवाओं को खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है तो वे इनोवेशन यानी नवाचार और नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ते हैं और इससे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम अब उनके ऊपर यानी युवाओं के ऊपर अपनी सोच को डालते रहें। युवा को अगर अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हम देते हैं तो ज़रूर ऐसे विचारों से समाज को लाभ मिलता है। शायर बशीर बत लिखते हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ हो जाएंगे रास्ता बन जाएगा। वाकई वो रास्ता बना सकते हैं। अनुभव अगर उनके साथ जुड़ता है और उनके विचारों को अगर तरजीह दी जाती है तो वाकई वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, यानी युवा ऐसा कुछ कर सकते हैं। युवाओं को विचार की स्वतंत्रता देने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे स्वतंत्र वातावरण में युवा लीक से हटकर सोचते हैं, जिससे स्टार्टअप और नई तकनीकों जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी विचार हमारे सामने आते हैं। एक सशक्त नेतृत्व हमें मिलता है। जब युवाओं को अपनी बात रखने और बहस करने का अधिकार मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक और नेतृत्व करने वाले बनते हैं। और दोस्तों, सामाजिक बदलाव के लिए भी युवाओं को विचारों की स्वतंत्रता देना जरूरी है। युवा रूढ़िवादी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं और समाज में सकारात्मक सुधार, समानता और न्याय की अलग जगाने वाले बनते हैं। और एक बात और कि विचारों की स्वतंत्रता से युवाओं की तार्किक क्षमता जो है वो बढ़ती है और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और इसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। तो युवाओं को विचारों की स्वतंत्रता देने की शुरुआत हमें वाकई अपने घर से करनी चाहिए। घर पे हर एक बात पे उन्हें डांट देते हैं और बाहर अगर इस तरह की बात हम करते हैं मंचों के ऊपर तो ये तो गलत बात होती है। इसलिए युवाओं को विचारों की स्वतंत्रता देने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। आइए गाना सुनें।

0: बस एक कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कार्यक्रम सुन रहे हैं युवा वाणी। इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बात, इसमें हम युवाओं को विचारों की स्वतंत्रता देने की कर रहे थे। जहां युवाओं को खुलकर अपनी बात कहने का अवसर होता है, वो समाज अपने आप में एक अलग आभा रखता है। हम भी ये विचार करें, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर युवाओं को बात बात पे, जबकि वो कोई नई बात कहने का विचार रखते हैं तो बात बात पे उन्हें कह दिया जाता है तू रहने दे। इस तरह की बातों को जब उन्हें कहा जाता है तो उनके भीतर, उनके मन में कहीं ना कहीं एक कुंठा बन जाती है, और ऐसे में वो जो बात बहुत अच्छी कहना भी चाहते हैं तो डरते हुए कहते नहीं, कहते कि ठीक है, मन है तो यह है को नहीं। तो इस तरह की बातों को रोकें और उन्हें, उनके विचार की स्वतंत्रता आप प्रदान करें। बहरहाल, एक बहुत प्यारा सा गाना हम आपको सुनवाते हैं।

गीत अभी आपने सुना कैलाश खेर और सुजानी डिमेरो की आवाजों में। ए फ्लैट फिल्म का नाम था। दोस्तों, विचारों की स्वतंत्रता के साथ जो युवाओं को हम दे रहे हैं, उससे जुड़ी एक बात और है, बाल विवाह की। बाल विवाह की प्रवृत्ति कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। ऐसे में युवा जो अभी विवाह की आयु तक नहीं आया है, वो अपनी बात रखता है कि मुझे अभी विवाह नहीं करना, तो उसकी बात को तरजीह नहीं दी जाती। उसको शांत करवाया जाता है कि रिश्ता मिल रहा है, चुपचाप से कर लो। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जब तक हमारे युवा उस आयु को प्राप्त नहीं करते जिसमें उनका विवाह होना चाहिए, और ये भी कि जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, कुछ कमाते नहीं, कुछ काम नहीं करते, तब तक उन्हें विवाह जैसी जिम्मेदारी अगर हम देंगे तो इसके परिणाम सुखद नहीं मिलेंगे। इसलिए हम भारत की कल्पना बाल विवाह मुक्त के रूप में करना चाहते हैं। बाल विवाह जैसी कुरीति से हालांकि हम बहुत दूर तक निकल चुके हैं। अब ऐसे यदा कदा अवसर हमें देखने सुनने को मिलते हैं जहां ऐसी कुरीति दिखाई देती है, अन्यथा बाल विवाह नहीं हो रहे। लेकिन यहां पर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिसका विवाह होना है उसकी स्वीकृति को तरजीह दें। ये भी विचारों की स्वतंत्रता में आता है। गाना सुनेंगे अगला, बहुत अच्छा सा, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

गाना भी आपने समीर का लिखा हुआ सुना। दोस्तों, अब हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में, जहां हमें बात करनी है आज के दिन की, आज के इतिहास की। दोस्तों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन यानी 9 जून को 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा आज के दिन जन्म लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हम आपको बताएं। आज के दिन 1912 में भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लक्ष्मण प्रसाद दुबे का 1909 में जन्म हुआ था। और किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस, का आज के दिन 1949 में जन्म हुआ था। आज के दिन जिनका निधन हुआ, उनमें सबसे पहले हम बताएं आपको कि सन 1900 में बिरसा मुंडा, आदिवासी नेता और लोकनायक, का आज के दिन निधन हुआ था। आज ही के दिन प्रसिद्ध गीतकार और शायर असद भोपाली का 1990 में निधन हुआ था। और राज खोसला, जो हिंदी फिल्मों में निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक हैं, उनका 1991 में

निधन हुआ था। साथ ही मकबूल फिदा हुसैन, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्रकार का 2011 में आज ही के दिन निधन हुआ, और 1994 में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, भारतीय योगाचार्य थे, उनका भी आज ही के दिन 1994 में निधन हुआ था। आइए गाना आपको सुनवाएं।

0: उजास सुनिए 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे।
1: हमसे पूछे बगैर तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया।
2: मेरी जिंदगी है माँ, फैसले भी मेरे ही होंगे, आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं चोर हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ।
0: याद रखें 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे सुने नाटक अंतस का उजास।
3: तुम नशा करते हो अभी, गलत आदतों में पड़ गए हो तुम। ऐसी दौलत का क्या करोगे अविनाश, जहाँ तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होते जा रहे हैं। देखना अभी, एक दिन तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा।
4: गलतियों का एहसास
0: सुनना ना भूलें आकाशवाणी सूरतगढ़ की प्रस्तुति 11 जून 2026 गुरुवार सुबह 9:30 बजे नाटक अंतस का उजास।
5: इस प्रोमो के जरिए हम आपको ये सूचना दे रहे हैं कि नाटक आप सुनेंगे अंतस का उजास गुरुवार को दिन में 9:30 पर। अगला गाना हम सुने और असद भोपाली जिनका दिन आज का, उनका एक शेर हम आपको सुनवाएं। गाना आप सुने कि हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, हालात ने किसी से जुदा कर दिया मुझे, अब जिंदगी से जिंदगी महरूम हो गई। गाना सुनिए।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम डीआरएम पर 909 किलो हर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगा हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। ये समय है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय आप तक पहुंचाने का। पहले सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों का प्रसारण समय। संध्या 7 बजे कार्यक्रम हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होता है चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी नीम का तेल बेहतर फसल, वायु संचार स्वस्थ मृदा समृद्ध फसल, लहसुन मिर्च का अर्क कैसे तैयार

सुनिए आज के दिन के शेष कार्यक्रमों का प्रसारण समय। संध्या 7 बजे कार्यक्रम हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए होता है चौपाल। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी नीम का तेल बेहतर फसल, वायु संचार स्वस्थ मृदा समृद्ध फसल, लहसुन मिर्च का अर्क कैसे तैयार करें, इसके अलावा बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी आपको दी जाएगी। संध्या 7:45 पर कुछ भक्ति गीत आप सुनेंगे फिल्मों से, और फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात 8 बजे आपके लिए प्रसारित किया जाएगा। रात को 9:15 पर राजस्थानी लोक संस्कृति का कार्यक्रम गोरबंद, जिसमें हमारे श्रोता ईमेल खत और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपनी पसंद भेजते हैं। समय है रात 9:15 और फिल्म संगीत का हमारा फरमाइशी कार्यक्रम गीत गंगा रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सवेरे 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगी। चिंतन 6:45 पर होगा। खेती नवास्ते कार्यक्रम में किसान भाई सवेरे 7:10 पर चर्चा सुनेंगी बीजोपचार के लाभ। रामचरित मानस का सस्वर पाठ मानस कान सुबह 7:20 पर होगा। कल आप सुनेंगे भाग संख्या 270 का पाठ। सवेरे 7:30 पर सुप्रभात कार्यक्रम में चर्चा होगी साहस से समाधान या सफलता, जीवन में श्रम का महत्व और एकता में बल है। इसके अलावा आप फिल्म संगीत भी इस कार्यक्रम में सुनेंगे, यानी कुछ फिल्मी गाने भी आपको सुप्रभात कार्यक्रम में सुनवाए जाएंगे। मरुमंगल कार्यक्रम में शंकर दमामी हमारे कलाकार रहेंगे सवेरे 9:10 पर। कुछ फिल्मी दो गाने सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे और फिल्म संगीत का सुहाना सफर सवेरे 10 आपके लिए प्रसारित किया जाएगा। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए चर्चा होगी पॉलीथीन घातक है पशुओं के लिए। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी दिन में 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे उत्तम नागरिक के कर्तव्य, खादी के वस्त्रों का महत्व, बच्चों के नखरे करने के वक्त और मुल्तानी मिट्टी के फायदे। इसके अलावा महिलाएं अपने इस कार्यक्रम में फिल्मी गाने भी सुनेंगी। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम संध्या 5 होगा। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी आधुनिकता के मायने। इसके अलावा चूंकि कल बुधवार का दिन है, कल के दिन हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के गाने सुनते हैं आपकी पसंद के तहत। चौपाल कार्यक्रम में पत्रोत्तर होगा संध्या 7:00। फिल्मी गाने संध्या 7:45 पर, एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8:00। इसके अलावा हम अपने सुनने वालों को बता दें कल आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मन भावन। कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 10:00। इस कार्यक्रम के लिए आप अपने टेलीफोन कॉल समय रिकॉर्ड करवा सकते हैं सुबह 11:00 से 11:30 तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 220992 और 220993। सूरतगढ़ का एसटीडी कोड नंबर 01509। आप दिन में 11:00 से 11:30 तक अपनी टेलीफोन कॉल हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। कल का कार्यक्रम पेश करेंगे विकास पारिक। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सराय की सुनिए।

वतन ते सब कुछ कुर्बान ते वतन दी मोहब्बत दा जज्बा छलकदा होया हमेशा डिठा बन सकदे। उन्हें दी कविता अमर राष्ट्र दे कुछ लाइना सुनो जैंदे विच आप सबको उन्हां दे राष्ट्र प्रेम दी भावना स्पष्ट नजर आसी। यह जागृति तेरी तू ले ले, मुझको मेरा दे दे सपना, तेरे शीतल सिंहासन से सुख कर सोयुग ज्वाला तपना, सूली का पथ ही सीखा हूँ, सुविधा सदा बचाता आया, मैं बलि पथ का अंग आ रहा हूँ, जीवन ज्वाल जलाता आया। एक कविता तो पता लग दे कि कवि उन्हें हर प्रकार दे आराम कुन छोड़ के सिर्फ संघर्ष का रास्ता चुने, जेड़ा हमेशा जिंदगी को मुश्किल बने दे। लेकिन माखन लाल ई जीवन दर्शन विच देश सब कुल पहले है। माखन लाल चतुर्वेदी का संपूर्ण जीवन देश वास्ते समर्पित आई। उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद किया, नौजवानों को देश की आज़ादी किते मर मिटन वास्ते तैयार किया। जिमें स्वामी विवेकानंद जी को कोरा सन्यासी ते महात्मा गांधी जी को कोरा राजनेता आख के निशे टाल सकते, उमें माखन लाल चतुर्वेदी को भी कोरा साहित्यकार या पत्रकार आख के निशे टाल सकते। पंडित जी आज़ादी की लड़ाई के निडर योद्धा हैं, क्रांतिकारी कवि हैं ते निर्भीक पत्रकार हैं। वो कम करने वाले योद्धा, बुद्धि तो चिंतक, दिल तो कवि, स्वभाव तो संत ते उमदा किस्म का भाषण करने वाले इंसान हैं। उन्हें दा पूरा जीवन ते चिंतन भारत दे समाज की रक्षा करन विच ते उकूं सवारन विच लगा रिया। उन्हें दी भाषण देवन की कला ते एक बारी महात्मा गांधी जी ने आख्या है कि हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना तो माखन लाल जी ही जानते हैं। सन 1933 विच मध्य प्रदेश विच हरिजन दौरे दे वक्त महात्मा जी बाबई पहुँचे तो उन्हें आख्या है, मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वह माखन लाल का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखन लाल को जन्म दिया उसी भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूँ। एक भारतीय आत्मा, ए ना माखन लाल जी वास्ते बिल्कुल वाजिब उपनाम है पिया। एक भारतीय आत्मा एजा ना है जै वतन की गुलामी कबूल करन दी बजाय जेल विच दुख भोग के सुख का आनंद माणिया। सच विच माखन लाल विच देश प्रेम कुट कुट के भरया होया है। वो अपने आप को ते वतन दे सारे जवाने को सिपाही समझते हैं। उन्हें दी सिपाही कविता दे कुछ लाइना सुनो। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल, जल थल नभ हिल डुल जाने दे, तू किंचित मत डोल, दे हथियार या की मत दे तू, पर तू कर हुंकार, ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता सपने बने तबाही, कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूँ एक सिपाही। माखन लाल ने अपने देश विच एक पत्रकारिता विद्यापीठ स्थापित करने का सुपना डिठा है। उन्हें 1927 विच एक संपादक सम्मेलन विच आख्या है कि हिंदी अखबारें विच संपादन कला वास्ते एक विद्यापीठ की लोड़ है अते एजी विद्यापीठ की देखभाल करने वाला इंसान आला विद्वान, बुद्धिमान, परिश्रमी अते अनुभवी भी होवे। एक संयोग की गाल है कि उन्हें दे इस सुपने को 1990 विच मध्य प्रदेश सरकार ने साकार किया ते उन्हें दे नाते भोपाल विच एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने लंबे पत्रकारिता के जीवन विच माखन लाल जी ने आवण वाली पीढ़ी को रचना ते संघर्ष का जड़ा पाठ पढ़ाया वो हैरान करने वाला है। लिखण को घिन के ते प्रूफ रीडिंग तक का सारा काम माखन लाल जी खुद कर गिनते हैं। एजा है उन्हें विच अपने काम को ईमानदारी ते मेहनत नाल करन दा जज्बा, जेड़ा आज मिसाल बन के रह गए। सारे कष्ट को चुपचाप करके सहंदे हैं, लेकिन कदें भी करम बीर विच उन्हें इश्तार दे के अपने दुखों का रोवन नहीं रोया। कदें धन वास्ते अपील नहीं की थी। गाहक वधाउण वास्ते अपने कालमे विच कदें नहीं लिखा। उन्हें विज्ञापन कट्ठे करके धन जुटाने वास्ते कदें कई आदमी की नियुक्ति नहीं की थी। ऐसे हैं माखन लाल जी चतुर्वेदी। गांधी जी के सच्चे सिपा सलार, अपनी धुन दे पक्के, जिन्हें की नज़र सिर्फ अपनी मंजिल ते आई। माखन लाल चतुर्वेदी की प्रसिद्धि एक कवि दे रूप में ज़्यादा है, लेकिन वह एक पत्रकार, निबंधकार ते सिद्धस्त संपादक हैं। इन्हें दी कविता का जड़ा मूल है वह है राष्ट्रीयता, जिंदे विच त्याग बलिदान ते कर्तव्य भावना दे नाल समर्पण भाव है। इन्हें दी कविता की भाषा सरल है, वह इंसान को जोश नाल भर देती है। इन्हें हिंदी के शब्दों के नाल उर्दू ते फारसी लफ्जों का भी प्रयोग किए, जिंदे कारण एक अलग तरीके की सादगी ते मिठास है। इन्हें दी रचनावां विच देश प्रेम का

ये कार्यक्रम इतें खत्म थी दे मैं कुंडे वो इजाजत सारी सराइकी संगत को राम राम। इन कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता हन डॉक्टर सुरेश मीणा।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी की थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने कि कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख

0: सटीक है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ 19 विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोकभवन में कर्नाटक के IIT धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।
1: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके 3 पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर थी।
0: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवम्बर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रुपए मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए। देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक MSME और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी, जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर

0: महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुँचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने, साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही

0: एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सांगठ कला गांव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रोचा इजोलिनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। और देशु दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों बाबत 95692 करोड़ रुपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किन्नो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली माए राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों रा ग्रामीण विकास मंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग माए ओ ऐलान किन्नो। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री चौहान कहो किणी राज्य रा बजट आवंटन माए कोई कमी नहीं करी ची है, बल्कि लारला साल री तुलना माए बजट 40% बधाई जियो है।
2: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: वीबीजी रामजी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा मुख्यालय रो दौरो कर 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लिनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावन और इनरी गोपनीयता बनाई रखन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।

0: राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: जयपुर राखो नागोरियान हल्का माए पटाखा बनावन राय कारखाना माए लाए लाग जावनो, तीन मजूरा ने मौत वेगी और पांच मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हल्का माए गैर कानूनी तौर चल रहा ई कारखाना माए हादसारी भगत महिलावा और बच्चा समेत आठ जना मौजूद हा। लाए लाग्या पछे बैठे राखी जी गैस री टंकी फाटगी। हादसा री जानकारी मिलता ही सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई जी। थानाधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाए लागण रा कारणा री जांच करी जा रही है।
2: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब आठ लोग इंजर्ड थे जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया है। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: प्रदेश राज्यसभा री तीन सीटा माथे चुनाव सारू उम्मीदवारा का नियम दाखिल करी जिया। सगला नौ नाम पाना आज विधानसभा माए करी जी जांच माए सही मिलिया। द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों तीन उम्मीदवार पर्चा दाखिल की नाहा। आम आए दो भाजपा रा और एक कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि तीन उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपा रा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माए कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन री काल आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो है कि जूना जमाना उई भारत भणाई लिखाई रो केंद्र रहो है। वे आज लोकभवन माए कर्नाटक माए धारवाड़ रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान बोल रहा हा। एक भारत श्रेष्ठ भारत रा तेत विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान राज्यपाल राजस्थान रा महापुरुषा और ऐतिहासिक स्मारका रो जिक्र ई कीनो। नवी शिक्षा नीति रो जिक्रो करता थका श्री बागड़े कहो कि इन माए नौजवाना ने हर हलका माए अगाड़ी बनावण माथे जोर दियो चियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर और डीग जिला रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कर और वठे विकास रा कामा रे बारा माए चर्चा कीनी और जरूरी हुक्म दीना। मुख्यमंत्री डीग जिला रा श्रीनाथ जी मिंदर माए जातरुआ सागे बातचीत कीनी और सुबिता ने बारा माए जानकारी लीनी। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ही मौजूद हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। बीकानेर रा PBM सफाखाना माए ऑपरेशन नु भिया जापा पाछे छह लुगाइया री तबियत खराब है जावन रा मामला माए चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल रपट मांगी है। ऐसा गई जोधपुर मेडिकल कॉलेज उई जानकारा री टीम जांच सारू बीकानेर भेजी जी है। इविचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग कर और मामला री जानकारी लीनी और अड़ा वाकया रोकण सारू सगला जरूरी जतन करण बाबत कहो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का खींवसर कहो कि बीकानेर रो ओ मामलो कोटा माए लाडला दिनाभिया मामला सरीखो नी है।
3: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर थी।
1: ध्यान जोग है कि बीकानेर माए ऑपरेशन उफिया जापा पछे छह लुगाइया री किडनी माथे असर पड़बारी जानकारी मिली है, जदक घनी मंदी एक लुगाई ने वेंटिलेटर माथे राखी ची।

0: है। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय वयोश्री योजना रा तहत आज बुजुर्गों ने जिंदगी आसान बनावण में मददगार साजो सामान दिया चिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत 872 बुजुर्गों ने ए उपकरण दीना। वे बतायो कई सारू लारला साल नवंबर महीना में खास शिविर लगार पात्र लोगों ने पिछाण करी जी चिंपा छे वानी जरूरत रे मुताबिक 85 लाख रुपया मोल रा उपकरण तैयार कराई चिया। भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर उं बधर 863 अरब डॉलर ताई पूग की है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय रा वाणिज्य विभाग माए संयुक्त सचिव साकेत कुमार आज जयपुर माए आ जानकारी दीनी। केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए राखी जी एक कार्यशाला माए श्री कुमार कहो कि इं मियाद माए सेवा हलकाओं जुड़ी बिक्री माए 9% बत्ती बढ़ोतरी दर्ज करी जी। श्री कुमार न्यारा न्यारा देशा सागर करी जिया मुक्त व्यापार करार उपजी नुई संभावनावां रा बारा माए जानकारी दीनी। वह कहो कि इणु भारत उं दिसावर माए सेवा और माल बेचण वाला ने बेहतर मौका मिल रहा है।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम रेजरिये खरीद बिक्री करण वाला सूक्ष्म लघु उद्यमारी तादाद साल 2016-17 रा करीब 2300 बधर अब 12 लाख वैकी है। जैम रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार आज नई दिल्ली माए खबरनवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि जैम माथे महिलाओं रा मालिकाना हक वाला उद्यमारी तादाद ये बेधर अब 216,000 ने पार कर की है और महिला उद्यमियां कान्यों खरीदी 93,000 करोड़ रुपया रा लेवल न पार कर की है। और अब मौसम प्रदेश माए तेज गर्मी और उमस रो असर बतक्यो है। आज श्रीगंगानगर बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोणा पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों। बाड़मेर चूरू कोटा जोधपुर और जयपुर में जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला में अंधड़ बरसात और 5 जिला में लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून राज्य रा कई हलका में ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद में राखी जी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी में सोना रो तमगो हासिल कीनो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावां दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश माए ई होड़ ने भारत री संस्कृति जुड़िया योग खेला ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून न विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG रामजीरा तहत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न उजू ली जावन वाले नीट UG परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा PBM अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर उम्बर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का गौतम सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर संध्या के 7 बजे हैं। ये समय है ग्रामीण परिवारों के कार्यक्रम चौपाल का।

0: चौपाल कार्यक्रम सुननीय सगळ्या परिवारांना भुरूबाई की घणी घणी राम राम, मोकळी मोकळी राम राम। किसान भाइयों, चाहे मानव जीवन हो चाहे खेतीबाड़ी की आपां बात करा, प्रकृति को जिको एक तोहफो है आपने मिलेड़ो, वो बड़ो कारगर है और बड़ो उपयोगी है। आपने जीवन में अगर बिंगो उपयोग आपां सही ढंग से करा तो बहुत ही कामगो है अपने वास्ते, और वो है नीम। नीम को जिको वृक्ष है वो प्रकृति आपने इसो उपहार देड़ो है कि जकन आपां अगर अपनी किसानी के मां बात करा तो किसानी के अंदर नीम को बहुत बड़ो महत्व है। नीम के पेड़ की पत्तियां की बात करा, निम्बोली की बात करा, चाहे बीहू मिलन वाली खाद की बात करा, तेल कीटनाशक सारा के उपयोग से भूमि की जी की ताकत है बिना बढ़ाण में, और भूमि में होने वाला कीट और अपने फसलों ने होने वाली बीमारियां बांगे नियंत्रण वास्ते बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जगह के कारण किसानों वास्ते सबसे ज़्यादा उपयोगी जी को है वो पेड़ हुआ है। नीम के बीज में ऐसा बैक्टीरिया हुआ है जिका फफूंदी रोधक गुण लेड़ा हुआ है, और आपने बूंटे पर जिको रोग लग है विंगे नियंत्रण में इंगे प्रयोग शू आप बहुत हद तक सफलता प्राप्त कर सका। इन पर चर्चा और आगे कर सा, बीच पहला सुना एक भजन।
1: ओ मेरी मोड़ी है कलाई जिन्हें दया को नहीं आई, मेरे मगरों में, ओ मेरे मगरों

सुने भजन किसान भाइयों, अपना वैज्ञानिक भी शोध करके सिद्ध कर चुके हैं कि नीम का बीज जिका है भी मिलन वाले जी को रसायन हुआ है भी शू आपने बूटे पर लागन वाला जी का कीट है बीमारियां हैं बाँ पर आप सफलतापूर्वक नियंत्रण ले सका। नीम का जितना भी उत्पाद है वह कीट नियंत्रण वास्ते और बारी बारी यानी कि लगातार जे लंबे समय तक आप उपयोग करा तो भी कीट के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न को नहीं हुए, जबकि आप दूसरा जी का रसायन है बंग उपयोग करांगा तो कठे न कठे बाद में कीट मरण रह जाए, क्योंकि बाने बचाण की जी की क्षमता है बा बंग अंदर उत्पन्न हो जाए और वे भी रसायन गए दुगुण उपयोग से भी मरे को नहीं। लेकिन अगर नीम को अपन लगातार भी उपयोग करा तो कीट के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न को नहीं हुआ। नीम की पत्तियां की जो आप बात करा तो जिकी सर्दियों के अंदर पत्तियां पीली हो जाए बन इकट्ठी करके जो आप भूमि के अंदर बा देवा तो एक बहुत ही बढ़िया खाद जिकी है बा तैयार हो सके और भूमिजनत जी का रोग है वह कट सके। बात करा नीम के तेल की तो बीज के उपचार वास्ते जिया गेहूं में दिमक के बचाव वास्ते गेहूं को जी को बीज है बिना नीम के तेल में 10 मिलीलीटर प्रति किलो की दर से आप उपचारित कर सका तो दिमक जी की है वह अपने बीज पर लगे को नहीं। सब शू जी की कारगर सिद्ध हुई है वह हुई है कीट नियंत्रण पर। तो जे खड़ी फसल में दिमक आपन लगे तो बिंग रोकथाम वास्ते आप नीम के तेल को 1 लीटर प्रति बीघे के हिसाब से सिंचाई पानी के सागे देश का या आप खड़ी फसल में कीट नियंत्रण वास्ते 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नीम को तेल और 1 ग्राम कपड़े धोने वालों जी को इजी आवे सर्फ जी को गराँगे माँ मिल जाए बिने मिला के जे स्प्रे करा तो इन तेल से चिंपा सफ़ेद मक्खी अंग नियंत्रण वास्ते आपने बहुत ही फायदा होगा। इनके अलावा तेलियो है सूंडी है इनके नियंत्रण में भी नीम का जी का उत्पाद है बंग उपयोग आप कर सका। बिया नीम को हर उत्पाद आप उपयोग करा तो अपनी भूमि ने अपनी किसानी ने लाभ हो सी बिंग अलावा अपनी भूमि के अंदर जी का मित्र कीट है बंग की संख्या भी बढ़ जाए तो किसानी के अंदर इनको जबरदस्त लाभ है। नीम को जी को कीटा पर प्रभाव पड़े वो के तरीके से पड़े, एक तो अंडा लार्वा प्यूपा ए बद्दे को नहीं आ पर रुकावट लग जाए, लार्वा और निम्फ के निर्मोचन में भी रुकावट आ जाए यानी कि आगे भी कौन बद्दे, लार्वा और वयस्कों पर प्रतिकर्षी प्रभाव पड़ जाए यानी कि खत्म होने लग जाए, मादा का जी का अंडा देने की प्रक्रिया बीम पर प्रभाव पड़ जाए अंडा दे को नहीं दे को नहीं तो आगे कीट बद्दे को नहीं, लार्वा और व्यसक पर घातक प्रभाव पड़े, भरण निरोधन पर प्रभाव पड़े, आंत्र की गतिशीलता में रुकावट लियावे तो कीट नियंत्रण वास्ते सबसे प्रभावी है नीम और नीम को

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनियो गीत। किसान भाइयों आपां बात करी नीम गै अर्क की। खेती वास्ते जैविक कीटनाशक के रूप में नीम गो अर्क तो लाभदायक है ही है। इंगे अलावा जे आपां लहसुन और मिर्च को अर्क बनावा और बिंगो उपयोग करा तो बिंगो भी लाभ जी को है। चाहे आपने मानव जीवन के स्वास्थ्य की बात कर लिया तो बहुत लाभकारी है और सागे आपने पौधा वास्ते बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में खेती वास्ते बेहद ही लाभदायक सिद्ध होडो है लहसुन और मिर्च को अर्क। बनाणु की है आपां इंगी सामग्री की बात करा तो लगभग 100 ग्राम लहसुन ले लिया, बिंग अंदर 100 ग्राम तीखी मिर्च पीस गए और बिंगो पेस्ट बना लिया और ई मिश्रण ने लगभग आधा लीटर पानी में मिलावा और कई घंटा तई या रात ने इन भेगे रख देवा। बिंगे बाद में इन मिश्रण ने सूती कपड़े छू बारीक छलनी छू छान लेवा। आपनो अर्क जी को है वो तैयार हो जाएगा। बिना उपयोग में किया लेना है तो इन गड्ढे अर्क ने आपां 10-15 लीटर पानी में बिंग अंदर आपां लारे जिया नीम के अर्क के अंदर जैविक शैम्पू या साबुन या सर्फ को जी को घोल है वो मिला लेवा और बीचू ओसी के पत्तियां ऊपर चौखित्रियाँ वो अर्क जी को है वो चिपक जाएगा और कीट जी का है वे फसल के नेड़े कौन लगेगा। विशेषकर आपा ने फायदो देवे जिका रस चूसन वाला कीट वे इलियां वे आ रोगों से सुरक्षित करे। बिंगे बाद में इंगी आपा स्प्रे कर दिया और फसल के ऊपर जदि वो छिड़काव करांगा तो जिका असर आपने नीम के अर्क का होया वे ही असर इंग में देखने मिलेगा। क्योंकि नीम ने तोड़ गए और बी हिसाब से अर्क बनाना थोड़ो मुश्किल हो जाए और आपा जे इन्हें बाजारों दोनों चीज़ अपने कन उपलब्ध है इन्हें बना गए और अपनी किसानी में उपयोग करा तो बहुत कारगर उपचार और सिद्ध होडो है। इंग ऊपर भी शोध होडा है और कीटा वास्ते जैविक उपचार के रूप में बहुत ही बढ़िया है। और जैविक कीटनाशकों के ऊपर आप जाने ही कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा अपनों खर्चो होने लग रहे है, बहुत रिपिया जी का है वह एड़ा लगन लग रहा है और बिंग होते हुए भी जिका कीट है बांगे ऊपर प्रतिरोधक क्षमता बांगे अंदर बढ़ेड़ी है तो वे मरे भी को नहीं। और अंग अगर आप उपयोग करांगा तो कठे न कठे एक कदम आप जैविक खेती का नहीं बढ़ा छा तो आपने इंगो उपयोग करना चाहिए और किसानी में इंगो पूरो लाभ लेना चाहिए। और सुन लें एक गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनियो गीत। किसान भाइयों, आपा मानव जीवन और अपनी किसानी दोनों ने जोड़ के देखा तो पहला आपा जिया अर्क की बात करी, दोनों ही चीज़ अपने जीवन में और अपनी किसानी में उपयोग में आवे। बी हिसाब से ही जे ऑक्सीजन की बात करा तो एक स्वस्थ शरीर वास्ते जिकी ऑक्सीजन की पूर्ति है बस जिम्मेदार हुए। बिया ही स्वस्थ जे जिकी माटी है अपनी भूमि है जकी के अंदर आपा किसानी करा, बटे अगर वायु को संचार कम होगा भी माटी के अंदर वायु यानी कि ऑक्सीजन कम होगी तो अपनी जिकी फसल है बा समृद्ध को नहीं होगी। समृद्ध फसल लेने वास्ते वायु को संचार जी को है माटी के अंदर पूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि वायु को जी को संचार है वो अपने बूटे की जिकी जड़ है बिना ऑक्सीजन पहुँचावे और लाभकारी जी का सूक्ष्म जीव है बांगे विकास और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकालने में मदद करे। और आ प्रक्रिया जी की है बा जड़ा ने सड़नू बचावे, सागे ही फसल की जी की पैदावार है बिना बढ़ावे। पैदावार बढ़े तो किसान भी समृद्ध होवे। माटी के अंदर वायु संचार वास्ते या वायु संचार का जी का लाभ है वह अपन किया देखने मिले कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हुए, जड़ा को समुचित विकास हो सी, बने सांस लेने में पोषक तत्वों ने अवशोषित करण में ऑक्सीजन जी को है बा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पोषक तत्व जब अवशोषित करण लाग जाएगा बूंटा तो बूंटे की बढ़वार जी की है बा अच्छी आवेगी। तो वो कारण है कि वायु संचार होना बहुत ही जरूरी है। वायु संचार ने आप अपने खेत के अंदर अपनी खेत की माटी के अंदर बढ़ा किया सका बीम पर विचार करा तो सबसे जरूरी है गोबर की खाद। माटी में सही मात्रा के अंदर जैविक खाद या कंपोस्ट जे आप मिला देवा तो माटी की जी की जल धारण की क्षमता है बा बढ़ जाए। जल धारण की जब क्षमता बढ़ जाए तो बिंग मा वायु को संचार बढ़ सी और सागे ही छोटा छोटा जी का है वह छेद बन जाएगा। इंशू वायु को आवागमन जी को है वो बढ़िया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग जाएगी और ऑक्सीजन जी की है बा भूमि के अंदर तई पुगण लग जाएगी। दूसरो तरीको है कम जुताई करके। अपनी किसानी के अंदर बिना जुताई या कम जुताई वाली जी की पद्धतियाँ हैं वे भी माटी के अंदर प्राकृतिक रूप से माटी ने ऑक्सीजन पहुँचाने में कठे न कठे मदद करें। एक है आवरण फसलां। खेतों के अंदर आवरण फसलां उगाने से माटी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाए। कार्बनिक पदार्थ जब बढ़े तो केंचुआ की संख्या बढ़ जाए और केंचुआ जी का है वह माटी में प्राकृतिक रूप से छोटा छोटा छेद बना दे तो यूं भी वायु को संचार जी को है वो अपनी भूमि के अंदर बढ़ जाए। विशेष तौर से किसान भाइयों ध्यान में रखा कि आपने खेत के अंदर

निकासी को प्रबंधन बढ़िया होना चाहिए। खेत में जे अतिरिक्त पानी जे जमा होने लग जाए तो वो माटी के अंदर हवा जाने वाली जी की स्थान है या जी का छेद है बने बंद कर दे, और ज़्यादा जल भराव के कारण माटी की हवा जी की है बा बाहर निकलनी भी बंद हो जाए। जे आपनी स्थानीय स्तर की बात करें तो माटी की गुणवत्ता और वायु संचार देखने वास्ते आपने माटी की जांच या पोषक तत्वों को जी को सुधार है बिंगी जरूरत होवे तो आपा बी हिसाब अपनी माटी की जांच करावा और पोषक तत्वों की बढ़ोतरी करा। इन शू के होसी कि अपनी भूमि के अंदर वायु संचार बढ़ जाएगो, वायु संचार बढ़ेगो तो बूटे ने ऑक्सीजन जी की है बा पूर्ण रूप से मिलन लग जाएगी। ऑक्सीजन जद आपने शरीर की बात करा या बूटे की बात करा जब पूर्ण रूप से मिलेगी तो बूटो जी को है वो समृद्ध होगा, और समृद्ध फसल ही समृद्ध किसानी की निशानी है। सुन लें एक और गीत।

सुनियो गीत। किसान भाइयों, जैविक किसानी की आप बात करा पर इतनी आसान को नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपा ने इनमें कमियां दिखे या बीती पैदावार आपने मिले को नहीं जीती आप चाहवा। और पैदावार लेने के चक्कर में आज भी बहुत सा अपना किसान भाई ऐसा है जिका कीटनाशकों को प्रयोग जी को है बहुत ज़्यादा करण लाग रहे, और बिंगो जिका नुकसान है वह बहुत बड़ा होने लाग रहा है। बिंगमा मानव स्वास्थ्य की बात करें तो बी वास्ते भी हानिकारक है, क्योंकि वो एक जहर है, इसको एलर्जी हो जाए और कैंसर जैसा बड़ा रोग भी हो जाए। लाभकारी जी का कीट है बंगो नुकसान होने लाग रही है, जिया मधुमक्खी है या परागण करने वाला अपना कीट है, शिकारी कीट है, वह नष्ट होने लाग रही है। कीटनाशकों का जरूरत छू ज़्यादा प्रयोग छू माटी की जी की उर्वरकता है वह भी कम होने लाग रही है, माटी में जी का जीवाणु है, या बात करिए आप केंचुआं की तो केंचुआ को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लाग रही है। जल का जी का स्रोत है वह भी प्रदूषित होने लाग रहा है, जिया नदी है, तालाब है, कुआं है, जटे भी आपनो भूजल जी को है वो कट हो वे या आप डिग्गिया भरा तो बंगो भी नुकसान हुआ है। विशेषकर जी का कीट है बंग अंदर प्रतिरोधक क्षमता जी की है वह बढ़ने लाग रही है, क्योंकि एक ही दवाई को जब आप बारी बारी प्रयोग करा तो कीट जी को है वो दवाई के प्रभाव छू बचन लाग जे, क्योंकि बिंग माँ प्रतिरोधक क्षमता जी की है वह बढ़ जे। वो नुकसान हुआ आप जरूरत छू ज़्यादा प्रयोग करा जद उत्पादन लागत बढ़न लाग रही है, तो मुनाफे गां जे आप बात करा तो आपने कीटनाशकों ऊपर आज देखा तो दवाइयों को खर्च जी को है वो दिनों दिन बढ़न लाग रही है। तो पी वास्ते आप हमेशा लेबल जी को है जिका दवाई के ऊपर निर्देश लिखेड़ा हुआ है।

मन ध्यान छू पढ़ा समझा बिंग बाद में प्रयोग करा और सही मात्रा में करा, ना कम करा ना ज़्यादा करा। सही समय पर छिड़काव करा, कीट की संख्या और फसल की अवस्था के अनुसार अपन छिड़काव करना चाहिए। सही विधि से छिड़काव करा, समान रूप से करा, पत्तियां के नीचे की सतह तक अपा छिड़काव करा। फसल जी का अवशेष है बंगी अवधि को हमेशा पालन करना चाहिए। कटाई से पहला निश्चित अवधि और छिड़काव अपा ना करा। एक ही कीटनाशक बारी बारी उपयोग में ना लेवा। तो आ छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखांगा तो कटे न कटे आपने किसानी जी को है वो लाभ हो सी। आपने कन बाजार भाव भी पुगता हुए डे सुरतगढ़ मंडी में आज कणक का भाव रहा 2411 रुपया में लेके 2475 रुपया तई, सरसों नीचे में बिकी 6990 रुपया और ऊपर में 7288 रुपया, ग्वार बिक्यो 5521 में लेके 5609 रुपया तई, जैतसर मंडी में आज सरसों बिकी 7076 रुपया नीचे में और ऊपर में 7255 रुपया, कणक बिकी 2331 में लेके 2650 रुपया तई, ग्वार बिक्यो 5600 में लेके 5611 रुपया तई, जो बिके आज 2081 रुपया। ऐहा मंडियों का बाजार भाव जिका आपने कन भुगता होया। आप बात करी कीटनाशकों की या जैविक जिका संसाधन है अपने कने बांगी, तो कीटनाशकों के अगर आप छिड़का भी हाँ तो बिना छिड़कते समय भी आपने विशेष तौर से कई सावधानियां रखनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से अपना जिका पहनने वाला कपड़ा है बंगमा मास्क दस्ताना चश्मा टोपी लंबी बाँह वाला कपड़ा जूता ए पैर के ही छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपने कभी खाणो पीणो नहीं करना चाहिए, या कोई किसान भाई जे धूम्रपान या तंबाकू को सेवन करे तो वो भी नहीं करना चाहिए। छिड़काव के दौरान हाथ मुंह आँख शरीर ए ढकेड़ा होना चाहिए। तेज हवा में छिड़काव नहीं करना चाहिए और हवा के विपरीत छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव के बाद में चौखित्रियाँ साबुन छू हाथ धोवा, मुंह और शरीर चौखित्रियाँ धोगे, अपना जिका पैरेड़ा कपड़ा है बने गर्म पानी के अंदर उबाल गए और फिर धोनो चाहिए। कीटनाशकों हमेशा बच्चा ने पशुओं ने अन्य दूर रखनो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जे घर के माँ भी आप कीटनाशक ले गया वहाँ या खेत के माँ आप कीटनाशक रखा तो कीटनाशकों को जिको डब्बो है बने दूसरे बर्तना में ना रखा, धूप नमी गर्मी में ना रखा, ठंडी और सूखी जगह पर आपने रखनो चाहिए। भंडारण की जगह पर बच्चा ने पशुओं ने या भोजन की कोई वस्तु ने बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। समय समय पर जिकी समाप्ति की तिथि लिखेड़ी हुए जिकी ना पा एक्सपायरी डेट का बिना जांचनो चाहिए एर अवधि पार जिकी दवाइयां हुए बंगो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आ छोटी छोटी बातों को जो आप ध्यान रखांगा तो किसानी जी की है वह दिनों दिन खुशहाल होती जाएगी और आप समृद्ध किसान बनांगा। तो आज समय इतो ही, अब हूँ चलूँ। राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत सुनिए।

मन्ना डे और साथियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए कार्यक्रम में आप सुने ये भक्ति गीत।

अभी आपने आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा ये भक्ति गीत सुना। लीजिए राजन साजन मिश्रा की आवाज में ये भजन सुनिए।

अभी आप सुन रही थी फिल्मों से भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर पर बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी, और उनकी मौसीकी में ये पहली रिलीज फिल्म। लेकिन दिन चूंकि आज असद भोपाली का, जिन्होंने शायरी की, फिल्मों के गाने लिखे, कुछ ऐसे मकबूल गाने जो पारस मणि फिल्म में आपकी कलम से निकले, सो आज के कार्यक्रम में हमने फिल्म रखी पारस मणि। लता मंगेशकर की आवाज में प्रोग्राम का पहला गाना आप सुनेंगे और आगाज करें, चूंकि आज पुण्यतिथि असद भोपाली की, भोपाल के शायर, कि मैं खुशनसीब हूं मुझको किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूं कि मुझको किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का रास्तार मिला, और है दिल में प्यार जबां चुप झुक।

असद भोपाली की भोपाल के शायर, कि मैं खुश नसीब हूं मुझको किसी का प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूं कि मुझको किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मेरे दिल का राजदार मिला, और है दिल में प्यार जबां चुप झुकी झुकी नजरें, है दिल में प्यार जबां चुप झुकी झुकी नजरें, अजब अदा से कोई आज पहली बार मिला।

जी दोस्तों, असद भोपाली ने पहली पहल फाजली बंधुओं के लिए दुनिया फिल्म 1949 में दो गाने लिखे मोहम्मद रफ़ी ने, जिन्हें आप आस्ती। एक गाना अरमान फिल्म माफ़ करें दुनिया फिल्म के लिए सुरैया ने गाया, एक मोहम्मद रफ़ी ने गाया। उसके बाद लता मंगेशकर, शमशाद बेगम ने भी बीआर चोपड़ा की अफसाना फिल्म में असद भोपाली के गाने गाए। लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म पारस मणि के लिए जो गाने लिखे असद भोपाली ने, उन गानों से असद असल में फिल्मी दुनिया में एक बाकमाल गीतकार के रूप में स्थापित हो गए। वो गाना सुने जिसने असद को असद बनाया। उन्हीं के गजल के इस शेर के साथ कि तुम दूर हो तो प्यार का मौसम न आएगा, तुम दूर हो तो प्यार का मौसम न आएगा, अब के बरस बाहर का मौसम न आएगा।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने असद भोपाली का लिखा गाना सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए संगीत बनाया। असद ने अपने वक्त के सबसे प्रमुख सभी संगीत निर्देशकों के लिए गाने लिखे, जिनमें हुसन लाल भगत राम, सी रामचंद्र खय्याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, श्याम सुंदर, कल्याण जी, आनंद जी और हेमंत मुखर्जी। आपने फिल्मी दुनिया में 28 साल की उम्र में, हालांकि बंबई आ गए, लेकिन तमाम उम्र संघर्ष आपने किया। तो शोहरत आपके वक्त के अन्य गीतकारों को मिली, उतनी शोहरत न मिली, लेकिन ये गाने आपकी शोहरत की निशानी है। आपको फिल्म मैंने प्यार किया के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1990 में मिला। आइए गाना सुने पारसमणि फिल्म का, जो कि आज की हमारी कार्यक्रम की फिल्म है।

गाना आपने सुना इंदिवर का। इस फिल्म के लिए फारूक कैसर ने दो गाने, इंदिवर ने एक गीत और असद भोपाली ने दो गाने लिखे। असद भोपाली ने जिन फिल्मों के लिए गाने लिखे उनमें खास फिल्में जिनमें इनका एक या दो गाने, दुनिया, आधी रात, अफसाना, तू नहीं और सही, प्यार का सागर, रजिया सुल्तान, गर्ल्स होस्टल, उस्तादों के उस्ताद, पारस मणि, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, श्रीमान फंटूश, लुटेरा, हम सब उस्ताद हैं, एक सपीरा एक लुटेरा, और भी कई फिल्में जिनमें मैंने प्यार किया। आज की हमारे कार्यक्रम की फिल्म पारस मणि, गाना सुनेंगे इस बार असद भोपाली का लिखा हुआ, इन्हीं की बात के साथ, कि न साथी है न मंजिल का पता है, मोहब्बत रास्ता ही रास्ता है, वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों है, वो सब कुछ जानकर अनजान क्यों है, सुना है दिल को दिल पहचानता है।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के लिए हमारी आज की फिल्म पारस मणि। पारस मणि के दो गाने असद भोपाल ने लिखे जो आपने सुने। आइए प्रोग्राम के आखिर में गाना सुने इसी फिल्म का और बात असद भोपाली की गजल के चंदाशार के साथ कि जब जिंदगी सुकून से महरूम हो गई उनकी निगाह और भी मासूम हो गई और कुछ इस तरह से वक्त ने ली करवटें असद। कुछ इस तरह से वक्त ने ली करवटें असद हंसती हुई निगाह भी मकमूम हो गई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। 8:30 बजे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हुआ, और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं खेल के मैदान की खबरों के साथ, जहां श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: भारत ए टीम ने श्रीलंका ए पर जीत के साथ त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर

0: 277 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 की इन पर 101 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका को निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए दोनों ने 93 रन जोड़े। अविष्का 45 रन और निरोशन 99 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मेजबान टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कप्तान अरागिचे ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। कप्तान का विकेट गिरते ही श्रीलंकाई टीम 269 रन पर सिमट गई। आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, अरशद खान और विपराज निगम ने दो दो विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की, और आज कार्यक्रम में बात होगी ऐसे एक और युवा खिलाड़ी मानव सुथार की, जिन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट लेकर ना सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बने बल्कि कई रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया। सुनिए 23 वर्षीय युवा मानव सुथार पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
2: Top edge and it's taken. A wicket in the first over. You can't ask for anything better. Fourth ball is all he needs.
3: अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक का विकेट लेकर भारत के इस डेब्यूटेंट मानव सुथार ने अपने मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस विकेट के बाद मानव ने मानव विकेट की झड़ी ही लगा दी और मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके। सुथार की फिरकी के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। मेहमान टीम की दूसरी पारी में भी सुथार ने एक विकेट झटका। मानव सुथार पिछले 35 सालों में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 6 विकेट हॉल लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने किया था।
4: फर्स्ट ऑफ मेनी मानव सुथार 6 for 33 इन 22 ओवर्स, सेकंड बेस्ट फिगर्स बाय एन इंडियन ऑन डेब्यू।
3: मानव सुथार डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकार किया कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास एहसास था। मानव की गेंदबाजी परफॉर्मेंस पर भारतीय स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
5: वेरी वेल बोल्ड मानव, आई थिंक फैबुलस एफर्ट ऑन डेब्यू, पिकिंग अप 5 विकेट्स इज ऑलवेज समथिंग स्पेशल। वेरी वेल डन, आई थिंक द एफर्ट यू पुट इन विद ऑल योर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस।
3: सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मानव ने बल्लेबाजी में बखूबी हाथ आजमाया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 41 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। मानव सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो मानव ने भी माना कि टेस्ट मैच की निरंतरता ही सब कुछ है और निरंतरता से इतर इस तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हो चुका है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों ने आज खेले गए मुकाबलों में बाजी मारी और किन अहम खिलाड़ियों पर कल नजर रहेगी।
6: आज खेले गए मुकाबलों की बात की जाए तो पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्सकरुनन की जोड़ी ने पहले दौर में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर्स फाइनल में प्रवेश किया, जबकि अच्युता दित्व राव और अर्जुन रेड्डी पोषणा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबलों में सनीत दयानंद ने पहले स्थानीय खिलाड़ी कारोनो को 21-17, 21-15 से आसानी से हराया और फिर मलेशिया के मिंग होंग लिम 21-9, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की की। वहीं मनराज सिंह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में असफल रहे। प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग के मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे, जिसमें भारत को अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु, युवा मालविका बंसोड, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हिमनाथ के साथ भारत की चुनौती रखेंगी। वहीं पुरुष सिंगल सिंगल्स में आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय, किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को भारत

0: से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी। उनके साथ ही ध्रुव रावत और मनीषा कीर तथा मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी भी भारत की चुनौती रखेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स केयर।
1: और अब बात हॉकी की, जहां अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को आज खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। श्री मांडविया ने पुरुष टीम को 61,50,000 रुपए और महिला टीम को 21,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी।
2: ककामिगाहरा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले स्वदेश पहुंचने पर अंडर 18 पुरुष कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
3: यही कहना चाहूंगा अपनी टीम को कि अपने कोचेस को थैंक यू, कितना सपोर्ट, कितनी ट्रेनिंग हम लोगों को मिली गई है और हम लोग वहाँ से आए जीत कर, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि इतना एशिया कप जीतना और एक दूसरे को सपोर्ट करना।
2: टीम के कोच और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवसर भारतीय हॉकी टीम को और मजबूत बनाएंगे।
4: 18 जो ग्रास रूट लेवल पे और उसके बाद सब जूनियर बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के कैंप्स अगर कंटिन्यू करेंगे सारी स्पोर्ट्स में, तो मैं कहूंगा कि सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर लेवल की जो इंटरनेशनल हॉकी है उसको मैनेज करना इजी है।
2: श्री मांडविया ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानीपूर्ति और नौशीन नाज तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात विश्व योगासन चैंपियनशिप की, जिसका कल गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। सुनिए इस आयोजन पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
5: भारतीय खिलाड़ियों ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि क्यों भारत को योग की महाशक्ति कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने योगा मैट पर अपने लचीलेपन और शारीरिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि पदकों की कतार सी लग गई। भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक हासिल किए। जापान 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिना ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है।
6: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो सारे एथलीट्स हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूं तो वसुदेव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्वगुरु बनकर सामने आ रहा है।
5: विश्व और भारत योगासन के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योगासन ने बहुराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपना शंखनाद कर दिया है और अब ये खेल ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे आयोजनों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
7: आने वाला 2036 के लिए जो हमने बिड की है ओलंपिक में और 2030 के लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड की है, वो भी गुजरात में होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार विश्व पटल पर योगासन ने अपना शंखनाद अहमदाबाद से कर दिया है।
5: इस आयोजन से पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी योगासन को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
8: भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
5: तो ये कहा जा सकता है कि योगासन अब खेल मैदान और पार्कों की योग मैट से निकलकर विश्व के खेल पटल पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब अंत में बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
9: 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व

0: जेता बनने के बाद अब हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू है तैयार। इंग्लैंड और वेल्स में अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए जोश, जज्बे और अनुभव के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तैयार। खत्म करने को 17 साल का इंतजार, तो अब दुनिया देखेगी दम। हर मैदान जीतने को तैयार है हम।
1: और आज बात करते हैं इस कड़ी में उन 5 खिलाड़ियों की जिन पर इस टीम की पूरी नजरें रहने वाली हैं।
2: इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का, जिनका बल्ला इस विश्व कप में काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहती है तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में 139 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं। तो रिकॉर्ड बखूबी बताते हैं कि इस स्टार बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड की स्थितियां कितनी बेहतर होती है। रिकॉर्ड्स की बात हो और हरमनप्रीत कौर का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में भारतीय मेडल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। हरमनप्रीत का ये आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वे अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में अब तक 526 रन बनाए हैं। वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वाली शेफाली वर्मा इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है, जिसकी कहानी खुद उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। सूची में चौथा नाम दीप्ति शर्मा का है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही है। टीम को दीप्ति से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। अगर मुख्य रूप से गेंदबाजी की बात की जाए तो रेणुका सिंह टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। स्टार तेज गेंदबाज का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड की धरती पर दमदार प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है, यानी किफायती के साथ साथ विकेट निकाल कर देने वाली खिलाड़ी। तो इन मजबूत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस विश्व कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाते हुए नजर आएंगी और इंग्लैंड की धरती पर युवा और अनुभव भी खिलाड़ियों का तालमेल लेकर उतर रही है, टीम की खिताब जीतने की उम्मीदों को और मजबूत करेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब समय हो रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमारे ईमेल sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर

0: द्विपक्षीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण

0: करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
5: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
4: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
6: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
4: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल

0: कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community

गोरबंद सुनने सगळ्या बेलिया ने आज रोहितास सरमारी घणी घणी राम राम। बेलियो आपने लोक रे दुए में कई लिखे आपने बारे में, अपनी माटी रे बारे में, आपने राजस्थान रे बारे में, के धोरा मुर्दर देसरा है समदर श्यू दूर, धोरा मुर्दर देसरा है समदर श्यू दूर, उनमें मोती निपजे हैर इनमें निपजे सूर। आ सूर बिरारी धरती सा आपनो राजस्थान एर इरे साथे त्याग री, बलिदान री, ममता री, प्रेम री आ भूमि। कैसादा सुरंगी कामण्यार ओडे चंगा वेस, बांका बड़ खग बांधना ओइज मरुदर देस। वो मरुदर देस है पण अबार सा लुआ रो चाले जफीड़, तो बात बिरकाली जी री याद आवे कै चिड़ी जे चोंच खोले नी कि खाने तो माऊ बूंदी जावे, इन तरह री चाले सा लू। तो आप रो ख्यांत राखनो सा, ध्यान राखनो, इन लोशियों बचनो सा लागी उड़ी माड़ी। और मेरा सुगन भी आपने

जी का लोकरा दुए नी भी हम खूब हिस्सा, कै चिड़ी ज नावे रेत में मेवा आवन हार। चिड़ी ज रेत में नावे नी तो मे आवे, कै चिड़ी ज नावे रेत में मेवा आवन हार, एर जड़ में नावे चिड़कली मे विदा तिन बार। देख लिया थे है ना, कै डेडर पानी सू निकल बारे बैठ्यो आए, डेडर पानी सू निकल बारे बैठ्यो आए, अथवा कूके जोर सू तो बिरखा दौड़ी आए, तो मे आवे सा। क्या पकी निम्बोली नीचे आवे, आधी डाल्या माए सुकोवे, इंडरो फल इन भांत बतावे, कठे कि निपजे एर कठे गमावे, है ना, कि जमानो हुए कि काल पड़े सा, कठी बिर खावे कठी कोनी आवे, ये सुगन है सा। क्या पीतल कांसी लो ने जिन दिन काट चढ़ंत, पीतल कांसी लो पर काट चढ़ जाए ना तो क्या हुए, क्या पीतल कांसी लो ने जिन दिन काट चढ़ंत, तो सुन ले भडरी जड़धर जड़ बरसंत। खूब में आवे सा फिर अबार तो मैं ना डीका एर याद करा कि भगवान बेगो सुखी बिर खावे नी तो जिको डील है जिको तो तपई तपे है, पर आज की प्रकृति है ये दोरिया है, एक किता तपे सा एर इमें रेवण वालो जीव जिको है, वो तिरसायो उजे तो पानी कठे ला दे सा, पानी नी ला दे। इन खातर बेलियों पानी रो इंतजाम आ खातर जरूर करो आप, है ना। बिर खाया बाद में तो कोई दरकार नहीं है, पर बिर खा नावे बिता ने संभालना तो उसी नहीं, ये अपना ही तो है, कोई न्यारा थोड़ी है नहीं। भगत सही राम को एक भजन ऐसा वो थन सुना श्या, कह पड़े काल पर काल सांवरा कहीं उसी मारो, है ना, सुनो थे।

हाँ बात है सा, मेरी उड़ीक करा आपा और अपना बेली उड़ीक करे के काग दिया बांचा। तो गांव दौलत परा गंगानगर सिंह शुलाल जी बिनिवाल रो कागद है साज था थे शांति बिनिवाल मंजू मोहित और हेमंत बिनिवाल। प्रोग्राम आपने फूटर लागे आ बात आप मांडी भी है और जे ना मांडो तो भी माने पतो है कि थे प्रोग्राम रा शौकीन हो दीवाना होते तो दीवाना ने तो देखो रेडियो चोखो ही लागे सा 90 साल जी का है रेडियो रा आप रे ताणी तो या सा है ना। आ बात है सा गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार सिंह सज्जन कुमार जांगड़ा राजबाला नवीन मंदीप प्रियंका सपना मीतू कार्तिक और नानियो वेदांश जागड़ा एलिक है राम राम रुतास जी थाने सगड़े बेलिया ने मोकली मोकली रामा श्यामा। बड़ो बढ़िया चालन आ रही जी गोरबंद थारी जी की प्रस्तुति है लाजबाब हुए जी सोरो जैसा घना घना धन्यवाद ऐसा आपने रामरमी करे ऐसा आपने लुहारू हरियाणा सिंह बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार बरखा पोती निहारिका युगेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार ए प्रोग्राम में क्या कोई भी राजस्थानी गीत थे माने सुना दियो। बिल्कुल सा गीत तो आपने सुनाई सा पछे गीत है क्या खतर थाने ना सुनावा तो मेल करे ऐसा आपने राम कुमार जी रिवार्ड साहब लिखे गोरबंद कार्यक्रम पेश करता मारे लाडले भाई रुतास ने घनी घनी रामा श्यामा आपने सगड़ो सगड़ांगो प्यारो आकाशवाणी 90 साल रो गयो सा मोकड़ी बधाई सगड़ा बिल्कुल सा। बात मांडे के मोबाइल री माया में भूलियो घर परिवार एर सामण बैठ्यो बोले नहीं चेट करे संसार क्या बात है के माँ बाप रो छाँव जद माथे धरती जीव मंदिर तीर्थ क्यों फिरे घरे बिराजे शिव पार्वती क्या बात है। चंद्रकला रिवार्ड ए राम कुमार रिवाड़ा पने बात फूटरी मांगी कह खुशहाल रहो सा निरोग रहो सगड़ा बिल्कुल सा आई तो अरदास आपा करा कह सगड़ा जी कह ना बे निरोगा रहे हुए मेला अपना बेली आपने मांडल नाग रिया लगो तार एर बारा मेल मांगा कागत आपा सगड़ा शामिल करांगा सा चक 15 PSU सरबजीत सिंह जोसन एर सरबजीत कौर जोसन ये तो अपने प्रोग्राम का पक्का थन श्रोता है एराना अच्छा लगे। सूरतगढ़ से भाई देखो भूपेंद्र मिशन साहब आपा ने मेल कर दी नहीं सा साथ है प्रभजोत मिशन RBB जानविका कह गोरबंद कार्यक्रम पेश करता ने मोकली मोकली रामा श्यामा राजस्थानी लोकगीत लोक भजन कोई भी मन सुना दियो। बिल्कुल सा भूपेंद्र जी रो देखो आपने मिले कागद मेल एर संदेश तो क्यों नहीं सुनावा आपा जरूर सुनावांगा। सात जेड सियूँ ओम ओजा कांता ओजा राजलक्ष्मी ओजा शक्ति ओजा कलर खेड़ा पंजाब सियूँ लालचंद संतोष ओजा ईया कमलेश रत्नेश भावित आनंद दिवाकर लिखा आपरी वाज और मीठी मायड भाषा गा अडीक करां सा प्रोग्राम ये दिन धूणो और रात चोगुणो चालतो रहे। गांव फेफाणा सियूँ लालचंद ओजा ओम राजेंद्र दलीप प्रदीप ब्रिजमोहन ओजा सगड़ा मिल बैठ गए कह सुना और साथ है गाँव 10 जेड सियूँ भानी राम जी किशन जी दीपू राकेश रोहानी विराट एर संजना क्या बात है सा एर गंगानगर सियूँ ललिता ओजा दिनेश ओजा इंदू ओजा गसा गए अपने बाणियों सुने प्रोग्राम एर बड़ो बीरो जीसोर हुए कार्यक्रम जत चाले राजस्थानी रात तो सा यही मजा है पछे और कहीं है अपना बेली आपा ने संदेशिया भेजे सा तो संदेशिया बार आपा लेवा चोखो लागे बने प्रोग्राम। ओ देखो सा सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली सू गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप अशोक अपन ने संदेश भेजो ऐसा आप राजस्थानी देखो प्रोग्राम सुनो नी एर समझो नी है ना नामरा चास्कू मत बनो थे प्रोग्राम का मजा लियो। भाटापारा छत्तीसगढ़ सू हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्प

इंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, हांडी खेड़ास्यू, पप्पू भारद्वाज, इंदु भारद्वाज, धर्मपाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज और आर एस शर्मा। वाजी वाह राधे श्याम जी, अंग्रेजी में चाले नाम आजकल, क्या बात है जी। मजनू का टिल्ला श्यू, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, गसागे माई को अपन है संदेश मिलियो। गांव खोखराड़ी श्यू, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी, शगुन बारासा भी अपन है संदेश भेजो ऐसा के 90 साल की बधाई वैसा। बिल्कुल सा था नहीं, गणी गणी बधाई। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र श्यू, पी एस नवानकर, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले एर सोपान ताइडे, ए भी प्रोग्राम सुने एर मेला भेजिए सा, संदेश भेजो है आप तो आप घणो घणो धन्यवाद करा। गांव नथाणा पंजाब श्यू, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता हर गीता, वाह जी वाह, क्या खुशियां बांटो और खुश रहो। ओम बगड़ियो आ गयो ऐसा, फाजिल का पंजाब श्यू, गाँव इंगो बांडीवाड़ो। ओम बगड़िया क्रियांश रजत अर बीबी गरिमा बगड़िया, क्या गोरबंद प्रोग्राम में भजन राजस्थानी लोकगीत थे सुनाओ नी, मन बहुत अच्छा लगा है। वाह जी वाह, थाने अच्छा लगा इन खातिर तो सुनावा पछे और बात की है तो चोखा लगा अपने बेलियां साथियां ने, इन खातिर तो आप कार्यक्रम करा, इन खातिर आप कोई बात नहीं करा। हो देखो सा चंडीगढ़ छू, सतीश अनेजार बिमला अनेजा, एक ये लिखा है कि इन रो इतिहास अनूठो है, इन माए मुलकरी आशा है, चौंकूटा चावी नैठावी या राजस्थानी भाषा है, क्या बात है। क्या इनमें वीरारी गुण गाथा, इनमें संतारी बाणी है, इनमें पापूरा परवाड़ा, इनमें रजवटरी बाणी है, क्या बात है सा। क्या इनमें जांबहरी जुगत जोय, पीपेरी दया प्रकाशी है, अर दीठो समदर्सी राम दे, दादू सतनाम उपासी है, क्या बात है। इनमें तेजेरो वचन तोर, इनमें हमीर रो हट पेखो, आवड़ करनी मालण देरा, इनमें परवा परचा प्रगट देखो, अर जद ताई संत सूरमा अर साहित्य कारारी सांसा है, करसा रे हिबड़ेरी किलोड़, आर राजस्थानी भाषा है, क्या बात है। सतीश भाई खूब फूटरी बात मांडी, तो गीतड़ो तो देखो आ बातड़ी तो थारी वीरताड़ी, अपन गीतड़ो के है ब्याह रो, क्योंकि आबार के है कि अधिक महीने बाद में ब्याह खुलसी, तो एक ब्याह की उडीक करे मार दही कोई, तो बिन सुनावा गीतड़ो सुनो थे भी।

कै सांझ पढ़िया दिना खेला जद मैं भीगो घर जाऊंगा है बैठा गीत तो घना फूटरा काढ़ रहा हूँ प्रजापत्र गायडा पण कि भगत रो की थोड़ सो ध्यान राखनो पड़े सा बालोतरा जिला होडू श्यू आपने मिल कर ऐसा उम्मीदा राम जी कै प्रोग्राम घणो फूट लागे सा एर प्रोग्राम सुन लाग रहा हाँ बड़ो जीसो रो हुए राजस्थानी भाषा रो कार्यक्रम चाले ना आपने रेडियो सूरत गढ़ तो के बात करो पछे जीसो रो छे सा लालो सुन लाग रहे सा प्रोग्राम लालगिरी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला गंगानगर में साथ है हेमलता हिना हर्षित एर खुशी गोस्वामी ए लाल लाल गिरिया जी की है नी ए बड़ी सुनी लागे सा अपने प्रोग्राम के अंदर अपना बेली साथी जी का है के प्यारा है सा ओ देखो सा गांव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा एर अलका मिड्डा अपने भेजे सा मेल ए संदेश सा लिखे के आंधी पी से कुत्ता खावे थारे घर से कहीं जावे क्यों आण साथ है माथों क्यों आण साथ है माथों मारे क्यों बिरथा जी ने कड़पावे साची बात है सा जी ने कड़पाणो नहीं चाहिए जैसा अर भगत जी है भीतर आदमी चालनो चाहिए जैसा जनकपुरी सारणपुर से मेल करे सा जोन डिकेस्टो रोजी पर्ल एर विलिस प्रोग्राम आनंद आया वैसा अर अपना बेली साथ देखो सा मुखराम जी करे मेल अपने बीर माणा शिव मुखराम शर्मा सतपाल गेदर बनवारी लाल कलवासना 285 आरडी बीर माणा शिव फूसाराम मार नो एलएल शिव बालक है छोटा प्रोग्राम लाड करे सा लक्षिता वंदना कासनिया एर निखिल निठारवाल का गोरमंद बहुत चौखो चाल रुतास भाई एर मानव सुथार अड़तरिया छारी वैसा देखो क्रिकेटरी बात साथ है सा कोई नाम करे बेली साथी तो घनी बधाई आपा देवा सा अपने नेड़े को टाबरियो है क्रिकेट मैच में छाग्यो बतावे पूरी तरिया क्या बात है जी। पवन भाई मेल करे सा पवन कटारिया शालू कटारिया समीर कटारिया करणपुर शू के रेडियो के 90वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनावां ए रोहतास भाई प्रोग्राम पेश करें बने घनी घनी बधाई बिल्कुल सा आप सा ने भी घनी घनी बधाई। मंडी गोलवाड़ा शू ब्रजलाल चौहान लिखा जी घनी घनी राम राम सा इया दाय आवे सा थारी वाणी आछो लागे प्रोग्राम पेश करण खातर थाने हर पूरी टीम ने घणो घणो धन्यवाद धन्यवाद आपने सा का आप सुनो वो देखो सा राम रमी करे आपने 5 MD पत्रोड़ा शू मंगल जनागल साथ है आरे रोशनी जनागल अंकुर इंदु ए डॉक्टर सुनील जनागल क्या प्रोग्राम बहुत फूटो लागे सा सुन लाग रहा मैं बिल्कुल सा सुनता रहो आप मिल करे सा आपने लारले 3 कार्यक्रम में शामिल कौन करी जी आज की आस है लूशू खुद ने बचाओ और जिनावरान बचाओ अच्छो कार्यक्रम है गोरबंद रोहतास जी कह थारी बोली मंडाडी मीठी लागे नोर शू राम निवास सुथार गुरुजी अपन मेल करिए सा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद है कोई भाई चूक गयो लो अन्यथा अपा छोड़ा तो कोई नहीं। झोरड़ ढाणी बलोल नगर शिव नरेंद्र झोरड़ भीमसेन झोरड़ लोकेश गौरव पुनीता एर आरवी अपन मेल करे सा अनिल जैन अपन मेल करे मेरठ शू साथ है संयम मुस्कान ए मास्टर जिव्यम मुकेश कश्यप को मेल मिले सा सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोनी ऋतिक और बलवीर सिंह जिला मुरादाबाद गांव दुलपुर यूपी से आप गणो गणो धन्यवाद देसा। रमेश चौहान रो बार मेल मिले कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोनी चौहान कल्पित चौहान बीबी गर्वी एर हिमाक्ष आप रो भी गणो गणो धन्यवाद देसा कि आप कार्यक्रम सुन लाग रहा हो देखो सा

सी आर बी राइस नगर सू चेतन राम सरसवा, नूरंग राम सरसवा, बांसुरी वादक प्रदीप, नानू देवी सरसवा, ममता सरसवा, ज्योति सोन जी जांगीड़, सुनील जी डाल, शिवप्रकाश जी खाती, नरसी सिंवर, धनराज भांबू का गोरबंद कार्यक्रम माने बहुत आछो लागे सा, उडीक रवे अर थारी बोली माने घणी अच्छी लागे, मारो जी करे थे कोई गाणो मान फूटरो सुनाओ। अरे फूटरा सुनान लाग रहा, तो आप सुनो तो सरी, सुनन तो लाग ही रहो, आज इसी चिंता ना करो। संतराम देवसा बापा ने मेल करी ऐसा, चक तेरा पी एस तेरा एस पी डी तहसील पीली बंगाशू, संतराम देव, शंकरलाल श्यामी, संजय देव, सरला अनीता, एर साथ है देखो आई बादली मांडी है, एर लिखा है कि बरस बादली बरस जिनावर तिस्सा तरस है, एर देख धरारी हाल आंखियां आंसू बरस है, मानस तो आपरी मन पसंद जाग्या चुने, रुख जिनावर बढ़े किने कवे एर कुन सुने। क्या बात है सा, बहुत फूटरी बात आप मांडी है, बहुत बहुत आपने धन्यवाद है। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ सू, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष अरनंदनी, धमदा गांव सुखरी कलाशू, अमित जंघेल, शकुन आरुषि ओशिका आदित्य, एरंग परिवार का सगड़ा लोग, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि आप कार्यक्रम सुनो। वो देखो सा आकाशवाणी सूरतगढ़ सू गोरबंद कार्यक्रम पेश करता भाई रुतास ने राम राम लिखे हिवडेरी गहराई सू पूरी लिखे का आपकी कार्यक्रम मांडनी जी कला है मन गणी चोखी लागे, राजस्थानी भाषा में जदा आप वो प्रोग्राम देवो तो पूरो घर ऐ सगड़ो परिवार आपरी मीठी बोली है राजस्थानी लोकगीत लोक भजना ने सुने, ऐ रेडियो सामने बैठ जाओ, वाह जी वाह राजस्थानी लोकगीत माने सुनाइयो, बिल्कुल सा जरूर सुनाशा। कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम अर्चना, साक्षी डाबी, गांव टूंकिया, तहसील सिंहदरी, जिला बालोतरा, श्यूआपान लिखे कै घड़ला सीतर नीर्रा, कितरा करा बखाण रे, हेमस्यू थारो हेत है जल इमरत रे पाण रे, कै इण उनाले री गर्मी में मिट्टी सू बनेड़ा जी का घड़े नी मांगी बात निराली है, बिल्कुल सा घड़िए गो पानी जी को है ना वो चोखो लागे वो पीणो चाहिए वो खराब भी कौन करे, अर बारू कठिवा नहीं तो पसीना माजे ठंडो बर्फ को पानी पी लिया तो लड़चे पानी है ना खराब करे। सारण नगर बाडमेर सू महराज सारण, हीरो सारण, हितेश राज सारण, अर नवप्रीत सारण आपा ने मेल करे, अर गीत कालूराम प्रजापत को सुनो चाहे जी को आपा सुनाई दियो, राजू टूटेजा खुश दिल जी का है ना एक गोविंदगढ़ माजी वाला मरवे, अर बठू आपा ने वो मेल करियो है। साथ है उर्मिला गुड्डू जीनू मन्नू शिव सेठी करणपुरी पालो मिस्त्री करणपुरी और स्माइल टूटेजा सागे पवन गुज्जर और भाई जुड़ियो है, गांव 34 एस टी जी पीली बंगा सू बिशन लाल मेरा अमन समीर रितु एर चाल कलाम पंजाब सुवांग सागे अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर एर अंबा चाल क्या लिख है भाई हिंदी के माँ बातली मांडी है कि 90 साल पूरा हो गया रेडियो स्टेशन ने लाग गया ने है ना, तो बहुत बहुत मुबारक हुए, घनी मुबारक जी घनी मुबारक, रेडियो है जना है अपनो प्रेम है, रेडियो वर्गी चीज नहीं है जी, का तो राम गो नाम है एर का रेडियो है, दो ही चीज है और तो कोई चीज ही कहानी संसार का माँ बनोड़ी के बतावा था ने। चैनपरा तहसील धोरी मना जिला बालोतरा सू गायक है जगदीश भारती चोखा भजन गावे भगवान रा, साथ है विजय भारती गोस्वामी, नरेश भारती गोस्वामी एर मलिता गोस्वामी, आज गीतरो थान गणो फूटरो सुनाशा, आप सुनोगा नहीं तो आप रो जिसोर जिसी के बात करो। धिंगाणपुर सू बीरबल राम नायक, मोनी देवी, हेमराज, सरोज, सुनीता, हर्षित, तारिका, न्यारिका, सारिका एर आंगा बेली साथी, करुता जी माइड भाषा को जबरो प्रोग्राम है गोरबंद लायको जी पढ़े सा जी जिनावरा खातर परिंडा ये कुंड माए पानी जुड़, बिल्कुल सा आ तो बिल्कुल पहली बात है जी कि आप शुरू में कई चिड़ियांगी जी की है नहीं चोंच खोले नहीं जना माऊ बूंदी जे बापड़ी तो आप ध्यान नहीं राख सियाँ तो पच कौन राख सी है नी। तहसील भादरा अनूप शहर सू गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल राघव, ओम मुरारी शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, अक्षु, महावीर लोरा, फूसाराम, हैरांगा बेली है, बिपिन बिनियाड़ ए भी सुना है प्रोग्राम एर कह माने भजन सुनाइयो, भजन तो सा सुना दियो, अब आर गीतड़ा थान सुनाशा कोई मेलडी है ना आप एक दो अपना संदेशा है अपने बेलियाँ साथियारा बेबी तो देखो जरूरी है सा बंग बिना तो पछे कोई बात ही कौन बने, अब की संदेशा हूँ बाँच दियूँ पछे कोई गीत आपा सुनशा फूट रोसो, संदेशो मिले साबार आपने खूब संदेश है अपने बेलियांगा पुगता आप करांगा उसी भी

तो बागपत यूपी से संजय ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया अपन कर ऐसा संदेशो रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश डॉक्टर मदन लाल ए स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलकाओं कर ऐसा प्रोग्राम आने दाय आवे और विकास पारिक जी को प्रोग्राम करियो वो खास आन पसंद आयो धन्यवाद ऐसा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर एर गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति एर शिवान शापा ने संदेशों मांडियो है पद्मा टाकी नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति सुरभि अश्विन मंगला बैन ए भी प्रोग्राम सुने और आपने लालो तो सुने ही है सा लालगिरी गोस्वामी ये तो अपना थितबंदिया है पलारी सिंह दिनेश कुमार नितेश कुमार दिवांगन दुर्गा प्रसाद पराग टेलर और तनुजा ए भी प्रोग्राम सुन लाग रहे ऐसा अभिजीत ग्वाणकर राही यार घर सिंह सरिता ग्वाणकर पंडिता सिद्धांत ग्वाणकर अर्जुन ए टुक टुक ए प्रोग्राम सुन लाग रहे रजाक भाई जी सुन लाग रहे ऐसा प्रोग्राम कैरोत भाई राम राम प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे कोई भी गीत सुना दियो हनुमानगढ़ सिंह रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान एर इरफान खान आने तो देखो गीतड़ो भाई जी सुनना जरूरी है एक गीत सुनागा पछे करसियाँ कोई बात नहीं।

वसा के फूटरो सपा गीत सुनो सा। आपना श्रोता है सा डबवाली सू जेकी बकोलिया सुनीता संजय अनिल एरमीनू बकोलिया लिखे गोरबंद कार्यक्रम मानगण फूट लागे एर 90 बरसारी घणी बधाई देवा रेडियो ने सा। बिल्कुल सा अली का डबवाली सू अपना बेली है सा बसंत सिंह चंद राजकुमार सुनीता कुलदीप गांधी प्रोग्राम सू घणो लगाव करे कह राजस्थानी वाला तो गीत चाले ना तो मेरे तो सारू कौन रहे हूँ तो नाचू पछे। वाह जी वाह क्या बात है बसंत सिंह जी अपना प्रेमी साथी। पटेल नगर मलोड सिंह डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया गीता रानी गगनदीप और बीबी आरजू जजूरिया गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब सिंह सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा श्रवण रिणवा हंसराज भाटिया मनी राम रणजीत राम किरोड़ीवाल।

निकै राम राम रुताजी प्रोग्राम गोरबन लाइभ सुन लाग्ने लार्लो प्रोग्राम शिरपालजी पेस गर्यो मन फुट लाग्यो आज होस् का त्यो कालुराम प्रजापतको आवाज बिल्कुल सा सुनाइदियो कालुराम प्रजापतको यति ढिल कठे त गाउँ घमण्डिया सिंह जगदीश ढुकिया प्रमिला ढुकिया ज्योति शिवम ढुकिया सरिता सचिन नमना तमना साइना विष्णु ढुकिया दोहती है ईवा धरणिया वाह जी वाह क्या बात है नानो जी हैं प्रोग्राम सुन लाग जाओ दोहती सागे बैठा बैठा क्या रुतास भाई मोकली मोकली राम राम गोरबंद पेश करो जी को तरीको मना अच्छो लागे हयात कलोनी अररिया बिहार सिंह फैजल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा प्रवीण वडिंग खेड़ा पंजाब सिंह मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा और ओ देखो सा गोरबंद पेश करता ने राम राम करे आरायण सिंह बनवारी लाल जयपाल पुराना अपना श्रोता साथी साथ है विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल और आकाशवाणी परिवार और श्रोतावान 90 वर्षांगी बधाई हो सा बिल्कुल सा आपने भी घनी घनी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ सिंह महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीन देवी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी क्या बात है सा हो देखो सा गांव जोगीवाड़ा गंगानगर सिंह प्रेम सारण मोनिकार मनीष सारण आपन मेल कर दिशा चकपंद्रा पी एस यू सरबजीत सिंह जोशन सरबजीत कौर जोशन गुरमन जोशन आदर्श पाल जोशन मेलबर्न रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर लिखा राम राम शाह रुताज जी एर लारलो प्रोग्राम विकास सिद्धियो फूट लागे वाह जी वाह धन्यवाद बिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवांगन कौशल्या आई मेल करियो ऐसा ताज मोहम्मद अंसारी अपना बेली ऐसा आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार में ए मेल करे अपन संदेशों मांडियो है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहाँ एर आंगा बेली साथी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा आपने कि आप कार्यक्रम सुन लाग रहा हो एर मेल आप कर लाग रहे हो अली का डब्वाली सिंह बसंत सिंह जी चंद्रो अबार देखो गुरप्रीत गोरा कुलदीप गांधी सागे संदेश आयो लेकिन संदेश ऐसी पहला कई नाम तो कह कंठ चढ़ गया मारे बोल देवा चालता ही नोर जिला हनुमानगढ़ सिंह राजेंद्र नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार एर बेटी सुचित्रा क्या प्रोग्राम गोरबंद माने अच्छो लागे सा बिल्कुल सा माने भी घणो ही अच्छो लागे थारो इन तरह कार्यक्रम के अंदर शामिल होनो बहुत बहुत धन्यवाद है आपने सुरेश भाई अपन मेल करे सा सुरेश राठौड़ साहब है एर प्रोग्राम से बड़ो लगाव रखा है गांधीनगर गुजरात से साथ है मंजुला राठौड़ विशाल एर निशा आप रो भी घणो घणो धन्यवाद करा कि आप कार्यक्रम में शामिल हो गया हो सा उम्मीदा राम सुरेश कुमार सुरतेश गोदारा एर मदन चौधरी ये अपने होडू वाला बेली ऐसा पूरा नाम हैगा अब आपा पुख्ता करें सा गांव वन वाला हनुमंता फाजिल का पंजाब सिंह विनोद मायल सीमा लक्षिता यशिका माँ विद्या देवी एर मायल परिवार रा सगड़ा लोग प्रोग्राम सुन लाग रहे सा भूपेंद्र जी गुरजी सुन लाग रहे सा प्रोग्राम अपने संगरिया गंदर बड़ा राजस्थानी का अपने हेताड़ू है कई बार की वह कि मेल जी की है ना वह खुलती थोड़ सो जिदोरो करे जन के थोड़ सी देरी हो जाए गुरु जी लिखे सीने जगत की सुप्रसिद्ध गायिका जी की है बांगो भी दिन है आज तो अब आते हैं बिल्कुल सा आपने भूपेंद्र सुथार मंजू सुथार ध्रुव सुथार चंद्रिका एर संगरिया जिला हनुमानगढ़ से आप अबार मेल करी ऐसा भूपेंद्र सुथार जी ने बहुत बहुत धन्यवाद करा कि आप रो मेल मिलो पर कई बार किए वह कह ऊंचला नीचला मेल थारा जी कहने कई बार डिलीट हुए कोनी जन बेबाँची जे ऊँ जानो समसाद बेगम की कठे थे बात टोरी है चंपा मेथी को गीतड़ो बनाया बार

वसा गीता आप सुनियो चंपा में थी रो कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव यहाँ घर से प्रेमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षित अभिषेक श्रीवास्तव कार्यक्रम सुने साहब और कार्यक्रम से बड़ो लगाव आपरो रवे थित बंदे आप मेल भी भेजो कागज भी मांडो। कई बार के वह का संदेश जिको है ऊंचो नीचो हो जाए तो ऊक चूक थोड़ी सी बगतरी बाई हो ही जावे। शिवपुरी में मोनिका जैन कार्यक्रम सुन लाग रहे सा वंदना तिवारी इंदौर में कार्यक्रम सुने बात लिख है कह सुरता राग न धा पिए एर धरा न धापे मे सुरता राग न धा पिए धरा न धापे मे एर प्रेम न धापे पदमणि नैन न धापे ने। क्या बात है साहब री बहुत बहुत आपने धन्यवाद करा सा कि आप कार्यक्रम इतना दूर बैठा सुनो और आपने कार्यक्रम जी का है बेदाय भी आ रहा है। अब आर अपने कन देखो अपना बेली साथी मिल कर है आ मेल है अपने कने छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बीबी अनिष्का अर्तन में गजभिये प्रोग्राम आपने घणु दाय आवे आप सुनता भी रहो। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास आशा देवी रो अपन मेल मिले आप भी कार्यक्रम सुने और खूब आनंद से सुने सा बहुत बहुत धन्यवाद है। वो देखो सा मेल अपन मिले मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बीबी चाहत सादिया हैरियारे परिवार रे लोग आने भी कार्यक्रम जिको है वो दाय आवे आप भी सुनता रहे कार्यक्रम तो मेल भी आप रो थित बंदो आपने मिले आप रो घणो घणो धन्यवाद करा सा। वो देखो सा गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर एर करमजीत कौर आपने मेल करी आप रो भी धन्यवाद है। वो देखो सा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ शिव मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा एर पीयू स्वर्णकार रो मेल अपन मिले आपने भी घणो घणो धन्यवाद देवा। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी मधु आशी शिवन्या एर अनुरो अपन मेल मिलियो सा आप रो हूँ सोचूं के पेलो मेल है ना हूँ तो बाँचो आज ही है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना ऐसा थे विवान रो अपन मेल मिले आप रो भी धन्यवाद करा। जलालाबाद बैस से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी एर निमित आहूजा रो आपने रोज रितरिया मेल मिलियो आप रो धन्यवाद करा कि आप कार्यक्रम सुन लाग रहा हो और बड़े प्रेम से आप मेल भी भेजन लाग रहा हो। वो देखो सा संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल साहनी पिंगावाला चौक गौरिया जलांधर से आप रोज रितरिया मेल करियो सा। वो मेल मिले है संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ रो दो मेल तो करने की जरूरत ही कौन है ना एक मेल भी आप लोग शामिल हुए हमेशा। अब्दुल गफार डावर

अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुवन जोशी और पायल जोशी अपन मेल करें और मेल है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवासियों। आप घणो घणो धन्यवाद ऐसा के कार्यक्रम आप सुन रहे हो। मुकेश भाई प्रोग्राम सुन लाग रहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला में। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण, निहारिका एर वंश, आप भी घणो घणो धन्यवाद करा सा कि आप कार्यक्रम सुन लाग रहा हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोरबंद। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी इस वक्त रात के 10 बजे हैं। लीजिए कार्यक्रम सुनिए गीत गंगा।

दोस्तों, आज दिन पुण्यतिथि का, एक ऐसे निर्देशक का जिन्हें हम वुमेन्स डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी इन्होंने अपने फिल्मों में इतनी अभिनेत्रियों को अवसर दिया, उन्हीं में से गाना जो अभी आप सुनेंगे, सुनिए और याद कीजिए राज खोसला की बनाई शानदार फिल्मों को। बशीर बद्र की इस गज़ल के, इस शेर के साथ आगाज करें प्रोग्राम का कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ, वही शहर है, वही रास्ते, वही घर है।

गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मैदिली खान की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की मूसीकी, अनीता फिल्म से, जो फिल्म राज खोसला की फिल्म। हम अपने सुनने वालों से दरख्वास्त करें कि आज के दिन हम राज खोसला की फिल्मों के गाने अगर सुनेंगे तो अच्छा है, अन्यथा आपके पसंद के गाने भी हम आपको सुनवाएंगे जो आपको राज खोसला से अलग भी पसंद हैं। बहरहाल मेल हमें किया श्रीगंगानगर से दिनेश ओझा और इंदु ओझा के साथ जयदीप ने। लिखते हैं, आज का दिन राज खोसला का दिन और उनकी फिल्म दो रास्ते का गाना आप हमें सुनवाएं। बिल्कुल, गाना हम आपको सुनवाएंगे, आप सुनते रहें कार्यक्रम। हमारे पास हमारे श्रोताओं के संदेश और साथ ही उनके मेल भी आ रहे हैं, सो रिक्वेस्ट हमारी इतनी कि आप जिस भी माध्यम को चुने बस उस एक माध्यम को चुने और आपकी पसंद के गाने आप तक जरूर पहुंचेंगे। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा और सचिन ने हमें मेल किया। ये मेल मिला हमें रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना का। लिखते हैं, कार्यक्रम गीत गंगा पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत गंगा कार्यक्रम सुंदर प्रस्तुति आपकी हमें अच्छी लगती है। प्रोग्राम में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो हमें अच्छी लगती है। आज दो रास्ते का गाना आप हमें सुनाएं। बिल्कुल, गाना हम आपको सुनवाएंगे। आपके अलावा भी हमारे पास इस गाने की डिमांड पहले से आ चुकी है, सो आप भी इस गाने को अपने इन दोस्तों के साथ सुने। दो रास्ते के लिए हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम का मेल हमें मिला। मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अक्रम, नफीसा परवीन, जोहनुदा खुदा का मेल। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश ने हमें ये संदेश भेजा है। गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन का मेल हमें मिला। लिखते हैं, कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं। आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को हमारी तरफ से बधाई। बिल्कुल, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी का मेल हमें मिला। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम सुरलकर ने मेल हमें किया है। गाना जो आप चाहते हैं वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। बहरहाल गीत हम दो रास्ते का पहले आपको सुनवाएंगे। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा।

और नोखेलाल वर्मा का मेल हमें मिला। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और अशोक का मेल हमें मिला। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा इंदु गोदारा पार्वती हिमांशु सरवण रिणवा हंसराज भाटिया मनी राम रणजीत राम किरुड़ीवाल और इनके बहुत सारे दोस्त इस एक मेल में शामिल हैं। राज खोसला के स्पेशल शो में हमें कोई भी गाना आप सुनवा दें, बिल्कुल गाना हम आपको सुनवाएंगे, बस आप थोड़ा सा इंतजार करें। गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया प्रमिला ढूकिया ज्योति शिवम सरिता सचिन अमना तमन्ना साइना विष्णु और ईवा धारणिया का ये संदेश हमें मिला है। गाना जो आप सुनना चाहते हैं वो गाना भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन बहरहाल गाना हम ये सुनते हैं, सुनिए आप भी।

गीत आपने सुना दो रास्ते फिल्म का आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह फिल्म राज खोसला की फिल्मी यात्रा एक डायरेक्टर के रूप में 1955 में शुरू हुई मिलाप फिल्म के साथ, उसके बाद सीआईडी, काला पानी।

57वां साल, मुंबई का बाबू, एक मुसाफिर एक हसीना, वो कौन थी, मेरा साया दो बदन, अनीता चिराग दो रास्ते, मेरा गांव मेरा देश, यानी कुल मिला के कहने की बात यह कि इनकी तमाम फिल्में गीत और संगीत से सजी हुई प्यारी फिल्में। एक मुसाफिर एक हसीना का गाना मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर ने चाहा है, गीत हम आपको सुनवाएंगे, आप सुनते रहें कार्यक्रम। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय का मेल हमें मिला, गांव कलाना तहसील भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश, युद्धव, कुंदन, लीलाधर स्वामी, कृष्णलाल मायल, कीडोराम जोया, हनुमान सारण, सुनील पाईवाल और इनके मित्रों का मेल हमें मिला, मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, दिशा मोहला, पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद प्राग, तनुजा, ईशांत और इनके बहुत सारे दोस्त, गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया ने हमें संदेश भेजे हैं। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल, विलिश और इनके बहुत सारे दोस्त, गांव अरायण से बनवारी लाल, जयपाल, विमला, ममता, सोनू, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम जयपाल ने हमें संदेश भेजा है। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और संदेश आपने हमें भेज दिया है। हमारे पास इस कार्यक्रम के लिए मेल हमारे श्रोता कर रहे हैं। सुरेश नारंग का मेल हमें मिला है सहारनपुर से, कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं। अंबाला कैंट से आजकल मेल आपका हमें मिला। सोनाली नारंग, पथिक भसीन और भूषण भसीन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये संदेश हमें मेल हमें किया है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंढाने, अर्चना ताई, हीरामन, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ने। सज्जन जांगड़ा का मेल हमें मिला गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से। सज्जन जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा का गीत आप जो सुनना चाहते हैं सज्जन भाई, वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। सुनते रहें आप कार्यक्रम। मिश्रीलाल विश्वकर्मा ने मेल किया तखतपुर छत्तीसगढ़ से, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा के साथ। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने हमें मेल भी किया है। गांव गोविंदगढ़ माझीवाला शिकरणपुर से राजू टूटेजा, खुशदिल, उर्मिला टूटेजा, गुड्डू, जीनू, मनु, शिव सेठी, करणपुरी, पाल मिस्त्री, करणपुरी, स्माइल टूटेजा, पवन गुज्जर। गांव 34 एसटीजी पीलीबंगा से बिशनलाल मेहरा, अमन, समीर और रितु। चाहल कला पंजाब से अमरजीत बंगा, परमिंदर बंगा, राजा बंगा, कुलविंदर कौर और अंबा चाहल। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। डब्वाली से जीके बकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया। नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु और पवन सुथार का मेल हमें मिला। आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। अशोक बब्बर ने मेल किया रामसिंहपुर से, साथ में पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू बब्बर। कार्यक्रम हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और सुन के आप हमें मेल भी कर रहे हैं, आपका हम धन्यवाद करें। कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। राज खोसला की फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का गीत आप सुनना चाहते हैं, गीत हम आपको सुनवाएंगे। लिखते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में आपने खोसला जी के बारे में बताया तो उनकी बहुत सारी प्यारी फिल्में हैं जिनमें गाने अच्छे हैं, आप उनकी मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना हमें ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, ये गाना हम आपको सुनवाएंगे नूतन की फिल्म जिसमें नूतन को फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। राज खोसला जिन्हें वुमेन्स डायरेक्टर भी कहा जाता था। गाना हम सुने एक मुसाफिर एक हसीना का।

आकाशवाणी सूरतगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंगा। मिल किया हमें हरीश बेरड़, रामजी का गोल गोड़ामालानी बाड़मेर से, साथ में सरिता बेरड़, प्रियांशी मानसी, पेमा रामजी बेरड़, विक्रम गोदारा, ममता और इनके परिवार के लोग, गांव रत्तासर चोटन बाड़मेर से मोनी जाखड़, कमला जाखड़, लक्ष्मी, रमेश, पम्मू, बाबूलाल जाखड़, देव देवी, पवन, सरस्वती बेरड़, नोजी गोदारा और जोगाराम जी गोदारा का, आपका भी हम तहे दिल से

धन्यवाद करते हैं। मेल मिला हमें गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा और इनके परिवार के लोग, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने हमें मेल किया। ये मेल हमें मिला है सिलोरा और श्रेवाणी सिलोरा सावा बाड़मेर से, गोर्धन राम सिलोरा, हिमांशु और इनके परिवार के लोग। गांव चैनपरा, तहसील धोरी मन्ना, जिला बालोत्रा से जगदीश भारती गोस्वामी, विजय भारती, नरेश भारती और इनके परिवार के सभी लोग। मेल मिला हमें नाभा, जिला पटियाला, पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु और इनके बहुत सारे दोस्त। छोटी बलिया, मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, सदफ आरसू, जूही इकबाल, इमरान, कपासेड़ा, नई दिल्ली से आमना नसरीन, आसमा परी, राविया मंशा, आशु अहमद और इनके परिवार के सभी लोग। महाराष्ट्र, बोराला खुर्द से आदिनाथ पाटिल और अमोल बाघ। रानी झांब ने हमें मेल किया रानी बाजार बीकानेर से। आपके साथ हैं बिट्टू झांब और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपका हम धन्यवाद करें। छोटी बलिया से मेल आपका हमने शामिल किया, अब आप और मेल हमें न करें। नंगली डेयरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक का हमें मेल मिला। गाना जो आप सुनना चाहते हैं वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में, आप बस कार्यक्रम सुनते रहें। मेल मिला हमें पिहरा बाजार, झुमरी तलैया, गिरडी से अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, शिवानी, प्रियंका, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टुसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, बीके सिन्हा, बांके बिहारी और इनके परिवार के सभी लोग। आपके साथ हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और अन्विका बेबी। भारत भूषण की दो मेल हमें मिली हैं, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री। कार्यक्रम में अगर हमारे श्रोता एक ही मेल करें और एक ही बार अपना नाम सुन के अगर खुश हो लें तो कार्यक्रम में हम बहुत सारे अन्य श्रोताओं की मेल भी शामिल कर पाएंगे। सुरेंद्र कुमार ने गंगानगर से मेल किया, साथ में निहारिका, देवांश, रेणु सिंगल और इनके परिवार के सभी लोग। सब्जी मंडी बुल्ढाना से शब्बीर हुसैन, सैजद हुसैन, मुजू बाबा, आयना, अनम का मेल हमें मिला। ये मेल हमें किया है जिला श्री गंगानगर गोविंदपुरा 18 जीजी से खुशीराम रणवा, मोहनलाल महला, इंद्रजीत झाझरिया, विनोद झाझरिया, पवन जाखड़, चमन महला, ऋषभ महला, मनीष महला, उदेश, दीपक, हनुमान खेरवा और इनके बहुत सारे दोस्तों ने, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करें। कल्पना और मदन झा के साथ मानव और मयंक का मेल हमें मिला वापी गुजरात से। ये मेल हमें किया है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुविधा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय ने। मेल हमें मिला कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बीबी गर्वी और बीबी वॉय हिमांश का। रविंद्र मोहन दास ने किशनगंज बिहार से आशा देवी और अनुराग

मोहन के साथ हमें अब तक 10 से अधिक मेल कर दिए हैं, तो अब आपका नाम हमने शामिल किया। अब आप कार्यक्रम सुने। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, बिबी इंदौरा और इनके परिवार के लोग लिखते हैं। राज खोसला की फिल्म का कोई भी गाना आप हमें सुनवा दें। बिल्कुल। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी। ढाबा झालार से कार्यक्रम सुन रहे हैं अनिल और शोभा। उत्तम सिंह जंघेल का मेल हमें मिला है कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी। धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और इनके परिवार के लोग। फागुराम यादव ने मेल किया संबलपुर कांकेर से। फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का मेल भी हमें मिल चुका है। आप सब सुनिए ये गाना। फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की।

मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से। कार्यक्रम सुन रहे हमारे श्रोता, इस कार्यक्रम में चूंकि राज खोसला की फिल्मों के गाने इतने प्यारे कि उन्हीं की पसंद के गाने आप सुन रहे हैं, उन्हीं की फिल्म के गाने आप सुन रहे हैं जो आपको पसंद है, हमारी जो श्रोता अन्य गीत सुन रहे हैं वो भी हम उनकी फरमाइश पूरी कर ही रहे हैं। सुनते रहें कार्यक्रम आप। डाब की रोड़ा कोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और इनके परिवार के सभी लोग, आमा खोडरा रेंगा खार जिला कबीर धाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम दक्ष प्रिय और गीत सरगम नेताम, आपने मेल किया, आपका हम धन्यवाद करें। सालर पहलगांव कश्मीर से हमारी नियमित श्रोता पीरजादा मिराजुद्दीन और इनके बहुत सारे दोस्तों के साथ गाना हम आपको सुनवाएंगे, आप सुनते रहें कार्यक्रम। गंज डुंडवारा कासगंज से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही का मेल हमें मिला। गीत आप सीआईडी फिल्म का सुनना चाहते हैं, ये गाना हमारे और भी श्रोता सुनना चाहते हैं, सो गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे, बस आप कार्यक्रम सुनते रहें। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी गगनदीप और आरजू जजोरिया के साथ गुड्डू ने हमें मेल किया, धन्यवाद आप काम करें। गोलवाला से ब्रजलाल चौहान, नीरज और इनके दोस्तों का मेल मिला। अरविंद कुमार का मेल हमें मिला है, साथ में गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। गाने जो आपने चाहे हैं वो हम जरूर आपको सुनवाएंगे, उस फिल्म का गाना आप सुनते रहें कार्यक्रम। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी का मेल हमें मिला। मेल हमें मिला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। सीता और गीता को हम गाना सुनवाएंगे उनकी पसंद का, हमारे और भी सुनने वाले जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनकी पसंद के गाने भी हम आपको सुनवाएंगे। और ये मेल हमें मिला है इंदौर से वंदना तिवारी और इनके परिवार के सभी लोग जो कार्यक्रम सुन रहे हैं और गाना आपने चाहा है आवारा फिल्म का, ये गाना भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनवा पाएं, क्योंकि हमारे श्रोताओं की पसंद के ये कार्यक्रम हैं, इनमें उनकी पसंद के गाने चलते हैं। छेलाराम मेघवाल ने मेल किया हमें तहसील बावड़ी जिला जोधपुर के गांव मेलाना से, आपके साथ है रविंद्र, देवेंद्र, अनीता और फूली देवी मेघवाल, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करें। चक 15 पीएसबी से कुलदीप सिंह कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक और इनके बहुत सारे दोस्त, आपका भी हम धन्यवाद करें। ये संदेश हमारे पास है गांव डाबली रंगाला जालोर से, खूब सारे नाम के साथ हैं ये, इतने लोग इनके साथ अगर रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा परिवार आपका। धनवंती, आसू सांचटा, खुशबू धेड़ू, खुशबीर, तेजवर्धन, सिद्धार्थ प्रियदर्शी, रमेश रोपड़िया, संगीता, दिनेश, ममता, जगदीश, विनोद, ममता, अशोक, लीला, ज्योति, प्रतिभा, भरत, हेमेंद्र, मास्टर पेमा राम, सीरा राम, रामसनेही, कोला राम, वीरेंद्र चौधरी और इनके बहुत सारे दोस्त। गांव वांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश और इनके परिवार के लोग। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, हाजी डॉक्टर अफसल मलिक, निप्पी साहनी, सुनीता साहनी और इनके बहुत सारे दोस्त, जो गाना आप सुनना

गाते हैं वो गाना हमने बजा दिया। आपने कार्यक्रम अगर सुना हो तो आपने सुना होगा ये गाना। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का मेल हमें मिला है, आपका धन्यवाद करें। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा साहब ने संदेश हमें किया है, आपका धन्यवाद। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद, प्रदीप और इनके परिवार के सभी लोग, आप सब दोस्त सुनिए इस बार गाना आवारा फिल्म से।

लता मुकेश का गाया ये गाना शैलेंद्र का आपने सुना, शंकर जयकिशन की मौसीकी और आवारा फिल्म का नाम था। मिल किया हमें संदेश नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदनलाल वर्मा, कीर्ति, प्रियांश और इनके परिवार के सभी लोग, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और इनके बहुत सारे दोस्त, गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण, दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। गाना आप सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म का, ये गाना हम सुनवाएंगे आपको, सुनते रहें कार्यक्रम। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा।

योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और निवान शर्मा। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन जोसन, आदर्श पाल जोसन मेलबर्न, रोविन सिंह जोसन वैंकूवर से आपके साथ शामिल है। गांव खारियां ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारणिया और इनके परिवार के सभी लोग। ये गाना जो आप सुनना चाहते हैं गाना हम आपको सुनवाएंगे। आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, टिंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा और इनके बहुत सारे दोस्त। नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु और इनके परिवार के सभी लोग। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार ने संदेश हमें प्रेषित किया है, आपका धन्यवाद हम करें। गांव लोहे इड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघविंदर अरविंद, रागनी रिया रेणु, दिव्यांशी आराधना, रोनिका, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, महराज जहां ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल किया। रिंगणी से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा का मेल हमें मिला है, मेल जिसे हम पढ़ रहे हैं ये संदेश भी हो सकते हैं। पद्मा टाकिस नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बैन। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, अदीप और इनके परिवार के लोग। मारहरा दरवाजा एटा से हमारी नियमित श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यसफ और रसीद वारसी। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बीबी जानविका ने मेल किया और लिखा है कि किसी भी फरमाइश में आप हमें शामिल करें। तो गाना हम आपको सुनवा दें सीआईडी फिल्म का।

जानिसार अख्तर का गाना आपने सुना ओपी नैयर की मौसीकी मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में सीआईडी फिल्म से, जो फिल्म राज खोसला की फिल्म। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी गगनदीप और बीबी आरजू जजूरिया ने हमें संदेश प्रेषित किया है। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करें कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने हमें संदेश भी प्रेषित किया। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर, हरविंदर, कुलविंदर और इनके परिवार के सभी लोग। अलीगढ़ डब्वाली से बसंत सिंह चन्न, गुरप्रीत गोरा, कुलदीप गांधी और इनके परिवार के लोग। गांव खोडू जिला बालोतरा से उम्मीदाराम, सुरेश कुमार, सुतेश गोदारा और मदन चौधरी ने हमें संदेश भेजा। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुणत। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हमारे नियमित श्रोता दातार सिंह शेखावत का संदेश हमें मिला है, साथ में संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, आपका धन्यवाद। जिला बालोतरा राजस्थान से गांव है पायला कला, मोहनलाल प्रजापत, माणक देवी, उषा बाला देवी प्रजापत, आप भी हमारे निमित्त श्रोता हैं। ये संदेश हमें मिला है गौरव अनिल, मानसी कविता अरोड़ा, मिलन सिनेमा रोड, नई दिल्ली, मोतीनगर एरिया से। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल का संदेश मिल चुका है। सुनील पाठक भाई ने अनारकली बाजार जगराओं से हमें संदेश भेजा है। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। सुरेश खुराना पप्पी ने एमएलबी रोड ग्वालियर से हमें संदेश भेजा है, साथ में आपके किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, आशीष, अनुज, छोटू, एसके पप्पी। फव्वारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा हमारे नियमित श्रोता, साथ में प्राची, कोमल, कार्तिक और इनके परिवार के लोग। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही, राजश्री, गौरव और इनके परिवार के लोग। गाना आप जो सुनना चाहते हैं शाही साहब, सुनवाएंगे जरूर, सुनते रहें। वाड़ी खामगांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर, शुभम, साक्षी और इनके परिवार के लोग। वठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित नारंग का हमें संदेश मिला है। बाबा कुटे रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा और विशु खेड़ा ने हमें संदेश डाला। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश मिल चुका है। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और इनके साथ हम हैं दोस्तों के नाम इन्होंने लिखे। कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक का संदेश मिल गया। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबी गोरी और हसन सिक्का। बलकरण वर्मा, ज्योति, अंजनी, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और मिथिलेश ने गांव पंचायत पठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। गांव बणवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यासिका, माँ विद्या देवी और उनके परिवार के सभी लोग। भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह चौधरी ने हमें संदेश भेजा है। सुनिए आप बम्बई का बाबू फिल्म का गाना।

मजरू सुल्तानपुरी का गाना अपनी सुना, एसटी बर्मन ने मुसीकी बनाई, आशा भोसले और साथियों ने आवाज़ दी। बॉम्बई का बापू फिल्म का नाम था। मिला भी मिला है थोड़ा देरी से, सादुल शहद से राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड। गाना आप सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। लिखते हैं आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। वो कौन थी फिल्म का गाना राम कुमार जी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन हो सकता है गाना जो आपने मांगा हो वो ना हो। प्रोग्राम के आखिर में गाना हम आपके लिए ये लेके आए हैं जो वो कौन थी फिल्म से है। संदेश हमारे पास हमारे दोस्तों के आ रहे हैं, हमने शामिल किए खूब सारे संदेश और उनके मेल भी। इसके बावजूद अगर हमारे कुछ श्रोता रह जाते हैं तो फिर रह ही जाते हैं। मिला संदेश हमें महाराष्ट्र जालाना से विजय पाटिल, जैन मंदिर कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसना, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदारानी हीना कौसर, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना दानिश, आसिफ शेख, सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन का मेल हमने शामिल कर लिया है, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद, सोनू पवन कुमार, साहिल राघव, ममता, मीतू, महावीर, फूसाराम, जितिन कुमार, हर्ष, मनीष कुमार, राजेश कुमार और इनके बहुत सारे दोस्त, लखवाली से मास्टर भंवर लाल, कृष्णा, ममता, विशाल, लक्षिता, नव्या राजपाला, मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकना राम और महावीर लोरा और बहलोल नगर से नरेश कुमार।

इसी गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त रोहिता शर्मा को अनुमति दें, इस बात के साथ कि हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू, और होठों पे अभी फूल की पत्ती की महक है, सांसों में रची है तेरी सौगात की खुशबू। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गंगा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात के 11 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा

0: की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार